हम सफर हम नवा पास आज जिले जरा वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल और यू ट्यून टू जिले जरा विद आरजे सोमिल एवरी सैटरडे नाइट। वी गेट यू रेडी फॉर द पार्टी दैट यू आर हेडिंग आउट टू, सो व्हेन योर फीट हिट दैट डांस फ्लोर यू एब्सोल्युटली रॉकिंग दैट होल पार्टी। चलिए लेके चलता हूँ आपको, बहुत सारी अच्छी रिक्वेस्ट आ रही है। इनफैक्ट ब्रेक पे जाने से पहले बताया होता है मैंने आपको कि बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम आरडीबी कलेक्शन। एंड आप किसी भी जॉनरा का म्यूज़िक ले लो बॉलीवुड में, एंड इफ़ यू पिक द टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ दैट जॉनरा, बी इट रोमांटिक सॉन्ग्स, बी इट ड्यूएट्स, बी इट रोड ट्यून्स, बी इट पॉप, बी इट रॉक, बी इट एनी जॉनरा, RDP will have a majority of songs in that top 10 list, be it his original compositions or remix versions. Aise hi kisi gaane ki aur leke chalta hu main aapko. This is ye din to aata hai yaar, ek din jawani mein. लगाते हैं हम आग पानी में, आज लेके चलता हूँ आपको इस गाने की ओर।

ये दिन तो आता है एक दिन, जवानी में आंखें मिले तो लगे आग पानी में। जब से आग लगा रही है परवीन भाभी, क्या बताऊँ मैं आपको। इनफैक्ट वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस ऑफ यस्टर ईयर्स इज परवीन भाभी, एंड व्हाट एन अमेजिंग करियर शी हैड, एंड शी रूल्ड इन माई बुक ड्यूरिंग हर टाइम। एंड परवीन भाभी, उनका एक बहुत ही अच्छा गाना है, एंड आई एम waiting to see if they make a really good remix of that song with Shashi Kapoor. The song is from Suhaag and very racy lyrics. Again, back in the day, मैं तो बहुत ही छोटा था, probably elementary school में था तब ये गाना आया था, and मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो. If you hear the lyrics of that song, my goodness, way ahead of a time, but absolutely a perfect fit for Parveen Bhabhi. She delivered the song so beautifully, so gracefully and so elegantly with Shashi Kapoor. चलिए लेके चलते हमको अगले गाने की ओर, और वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में बताता हूँ इस गाने के बाद. लेट्स टेक इट टू फिशरमैन्स वॉर्फ, थोड़ा सैन फ्रांसिस्को हो जाए.

0: मतलब?
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

बात है यार, कुड़ी कवारी तेरे पीछे पीछे पीछे जाता कहाँ है तू सोनिया। क्या मस्ती थी इस गाने में, गोविंदा और रानी मुखर्जी के गाने में। हद कर दिया आपने। नहीं, फिल्म मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिल्म का टाइटल बता रहा हूँ। द सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी। हद कर दिया आपने। और बताता हूँ मैं आपको, वर्ल्ड म्यूजिक डे जो आने वाला है, एंड इन फैक्ट फनेशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे विथ यू ऑल ऑफ द लिसनर्स ऑफ फनेशिया थ्रू आउट द मेट्रोप्लेक्स एंड बियॉन्ड। क्योंकि एवरी मोमेंट हैज़ ए मेमोरी अटैच टू इट, एंड अगर वो मेमोरी के साथ इमोशन हो देन क्या बात है, राइट? दैट मोमेंट डिजर्व्स अ सॉन्ग एंड अ ब्यूटिफुल लिरिक अटैच टू इट। अगर आपके पास ऐसा कोई सॉन्ग हो विच हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, एंड वेदर इट बी अ मेमोरी ऑफ रोमांस और हार्ट ब्रेक, चाहे वो वेडिंग एंथम सॉन्ग हो या फिर पार्टी ट्यून हो या हो रोड ट्यून्स या हो स्पोर्ट एंथम, वेल डू डेफिनेटली फिल अप द फॉर्म ऑन गूगल फॉर्म्स जो है आपको मिलेगा फनेशिया.net वेबसाइट पे। June 15 तक आप फिलअप कर सकते हो सॉन्ग, एंड यू कैन नॉमिनेट मोर देन वन सॉन्ग्स, यू कैन फिलअप मोर देन वन फॉर्म्स ऑन फनेशिया.net। एंड वट दे विल डू इज द टीम विल गो एंड सेलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनरा एंड द सॉन्ग दैट हैज़ बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस। आई टेल यू वन थिंग, वन ऑफ द सॉन्ग्स फॉर मी दैट मेड अ ह्यूज इम्प्रेशन, चाहे कह लीजिए इसको एंथम सॉन्ग कह लीजिए, राइट? कोई कहे हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना, दैट वॉज द एंथम फॉर अ टाइम। एंड देन हर पल बदल रही है रूप जिंदगी, दैट बिकेम माई गो टू सॉन्ग फॉर सम टाइम। एंड देन सो मेनी सॉन्ग्स, देन बहती हवा सा था वो। आपके पास अगर ऐसा कोई हो तो ज़रूर गो टू फनेशिया.net, गो फिल आउट दैट गूगल फॉर्म, एंड इफ योर सॉन्ग इज पिक्ड यू स्टैंड टू विन एक्साइटिंग प्राइसेस ऑन World Music Day. Ji haan, definitely go and check that out, and thank you for tuning into Phanesia, where you get all of the class, none of the bakwas.

जी हाँ, सात समंदर पार ये पीछे पीछे आ गए और हमको कहीं पे छोड़ के चले गए दिव्या भारती. इनफैक्ट कितना अच्छा इनका करियर वाज ऑन द राइज. शी केम फ्रॉम द साउथ, ऑफ कोर्स शी इज़ पंजाबी गर्ल, बट शी केम फ्रॉम द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. देर वॉज अ बिग ह्यूज हिट मूवी इन तेलुगु कॉल्ड बुपिल राजा, एंड शी वॉज देयर अगेंस्ट स्टारिंग पेयरिंग अगेंस्ट वेंकटेश. एंड देन ऑफ कोर्स शी वॉज विथ शाहरुख खान इन दीवाना, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड देन शी बिकेम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. गॉन टू सून दिव्या भारती. दैट इज सात समंदर पार, टेकन फ्रॉम विश्वात्मा. 1992 में आई थी एंड दिस वॉज पिक्चराइज ऑन सनी डियोल एंड दिव्या भारती. रेस्ट इन पीस, हैशटैग रेस्ट इन पीस दिव्या भारती. चलिए लेके चलता हूँ अपने गाने की और उससे पहले बताता हूँ मैं आपको फन पिज्ज़ा किचन के बारे में. अगर आप क्रेव कर रहे हो कुछ चीज़ी विद देसी ट्विस्ट, जी हाँ, फन पिज्ज़ा किचन इज वेयर फन पिज्ज़ा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. For all the veggie lovers, you can try the achari paneer pizza, which is packing the tangy achar punch with soft paneer melting in spicy magic sauce. And agar aap meat lover ho, to tandoori chicken pizza is pure smoky perfection straight from the tandoor to your taste buds. Ji haan, straight from tandoor, not the oven, straight from the tandoor to your taste buds. So whether if you like it bold or beautifully balanced, there is a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. For details, do visit funpizzakitchen.com website. And agar aapko taste karna hi ho, details to bahut ho gaya, aapko jana hi aur indulge karna ho, to pahunch jaiye Fun Pizza Kitchen. 2 locations, Frisco and Colony mein aapko milenge iske do do locations.

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
2: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
8: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
9: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
8: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
10: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
14: Wait, itna sab aur price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
16: Welcome back, ladies and gentlemen. This is your host, सोमल। यू ट्यून टू जील जरा उतारजे सोमल, ये शो होता है 6 से 9। आज स्टार्ट किया हमने थोड़ा जल्दी एंड रहूंगा मैं आपके साथ 9 बजे तक और करूंगा आपको मनोरंजन राइट हियर। सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग, नॉट सेलिब्रेटिंग, वी आर पार्टिंग बीच साइड। जी हाँ, वी पार्टिंग बाय द बीच। एंड अगर आपके पास कोई अच्छा सा बीच वाला सॉन्ग हो, वी बीन प्लेइंग बीच सॉन्ग्स फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स बिकॉज वन आई केम टू द स्टूडियो द टेम्परेचर गाड़ी में जो अब आ रहा था हमें 95, जी हाँ 95 दिखा रहा था मुझे टेम्परेचर। और देन आई सेड यू नो व्हाट, गर्मी में लोग क्या करते हैं? गर्मी में पीपल ट्राई टू एस्केप द हीट, दे गो टू द हिल स्टेशन, एंड द बेस्ट वे टू एस्केप द हीट इज, अगर हिल स्टेशन नहीं जा सकते हो तो बीच पहुंचाओ यार. आई जस्ट केम फ्रॉम एलए, इन फैक्ट आई यूज्ड टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन द बीच, सील बीच एंड हंटिंगटन बीच, वहाँ पे बहुत पास है करके. सो एवरी वीक मे बी कपल ऑफ टाइम्स अ वीक आई यूज्ड टू गो देयर. बट चलिए कोई नहीं, आपके साथ भी बीच खेलते हैं आज, और दो घंटे से हम बीच पे खेल रहे हैं. सो दिस सेगमेंट विल प्रॉब्ली स्टार्ट वाइंडिंग थिंग्स डाउन. बहुत सारे कॉल्स किए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आई आपकी, और बहुत मजा आया बीच सेगमेंट करने में. चलिए लेके चलता हूँ आपको इस अगले गाने की ओर, और इसके बाद मैं आपको गिव अवे देता हूँ वन पिज्जा किचन की ओर से. सो कीप इट ट्यून्ड राइट हियर ऑन जीरे जरा विद आरजे सोमिल. वेरी गेट ऑल ऑफ द क्लास, नन ऑफ द बकवास.

जी हाँ, इश्क जैसा कुछ फाइटर में देखा था आपने। वेल, मैं बता रहा था आपका, यू गेट अ चांस टू विन अ गिफ्ट, $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन। कैसे जीत सकते हो आप गिफ्ट कार्ड? आपको एक चीज़ करनी है, इनफैक्ट अगर आपको बताना है कि रणबीर कपूर का कोई भी गाना जो बीच पे हो, अगर सही जवाब, पहला सही जवाब, विल गेट अ चांस टू विन $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन फ्रॉम द फ्रिस्को लोकेशन। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। जी हाँ, बताइए मुझे और ले जाइए अपना गिफ्ट कार्ड। इन द मीन टाइम, तृप्ति की रिक्वेस्ट पे लेके चलता हूँ आपको और करता हूँ आपको सलाम और नमस्ते।

वॉज सलाम नमस्ते ट्रैक एंड इतने सारे कॉल्स आए, इतने सारे, माई गुडनेस क्या बताऊँ मैं आपको। लगता है रणवीर स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द बीच। यस, खुदा तो सब जानता है, खुदा जाने का कॉल का आंसर आया था। और शाइनिंग इन द सेटिंग सन अपन ओशन लाइक वो सॉन्ग, अजब प्रेम की गजब कहानी, दैट इज़ ऑल्सो रणबीर कपूर ऑन द बीच। एंड द सॉन्ग दैट आई हैड इन माइंड इज दिस वन। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर प्लेइंग अलॉन्ग एंड कंग्रेचुलेशन स्वाति ऑन विनिंग द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। इतनी गर्मी है यार, थोड़ी बारिश हो जाए और हम भी थोड़े भीग ले। कैसे भीगे? वेल, तेरे प्यार में अगर हम भीग ले।

0: इसके प्यार में तो पता नहीं कितने भीगे, बट ये गिव अवे में हम डूब गए, इतने सारे कॉल्स आए। लुक्स लाइक रणबीर कपूर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द बीच एंड यू गाइस आर राइट ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। कितने सारे सॉन्ग्स, चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। खुदा जाने के बहुत कॉल्स आए थे, एंड देन तेरे प्यार में टेकन फ्रॉम तू झूठी माय मक्कार, एंड दिस सॉन्ग वॉज ऑल्सो मैंशनड ब्रीफली। वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, स्लो बीट बट नेवर्थलेस ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। इतना भी पुराना नहीं है सॉन्ग, अजब प्रेम की गजब कहानी। इसमें आपको मिलेंगे आतिफ असलम और द एवरग्रीन वॉइस ऑफ अलीशा चिनाए।
1: तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
2: कहने आई

0: अच्छा खासा सा।
1: जी हाँ, दैट वॉज अजब प्रेम की गजब कहानी, तेरा होने लगा हूँ। दैट वॉज कंग्रेचुलेशन स्वाति ऑन विनिंग द गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन, एंड एब्सोल्युटली राइट ऑन। दिस वॉज द सॉन्ग दैट लॉट ऑफ पीपल हैड मैंशनड, एंड अनफॉर्चुनेटली ओनली हैड वन गिव अवे, सो स्वाति वन दैट। बट नेवरतलेस हमारे पास बहुत गिव अवेज आते रहते हैं और हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो कीप इट ट्यून राइट हियर ऑन 104.9 FM, वेरी गेट ऑल ऑफ द क्लास, नन ऑफ द बकवास। चलिए मैं लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग टू वाइंड थिंग्स डाउन ऑन द बीच, एंड देन लेट्स टेक द पार्टी इनडोर्स। बट इन द मीन टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बीच हिट्स अगर माने तो इससे बड़ा हिट शायद मैंने देखा, शायद नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, अगर होगा तो आप मुझे बताइए। द सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग टू अबाउट हैज़ गॉट 1.1 billion, जी हाँ, बिलियन, बी विद बिलियन, बी एज इन बॉय, नॉट एम एज इन मैन, बी एज इन बॉय, 1.1 billion व्यूज मिले हैं इस गाने को। एंड ग्रू अप, नॉट ग्रू अप बट कॉलेज डेज, देयर वॉज दिस सॉन्ग दैट वी यूज टू ग्रूव टू।

0: ला इस्ला बनीटा, दिस इज मैडोनाज एल्बम ट्रू ब्लू, जिसमें इन्होंने ये गाना रिलीज किया था एंड दैट हैज गॉन ऑन टू गैदर 1.1 बिलियन व्यूज जस्ट ऑन वन चैनल. अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स इट माइट हैव गॉटन मोर, बट देन लाइक आई वाज टेलिंग यू, आई डोंट नो ऑफ एनी ओशन सॉन्ग व्हिच हैज गॉट मोर व्यूज देन दिस. एंड देन आई गॉट अ कॉल, आई स्टैंड करेक्टेड, यू नो, नॉट स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड बीइंग एजुकेटेड, बिकॉज आई डिडंट नो ऑफ, इट जस्ट कंप्लीटली मिस्ड माय, मेरे जहन में नहीं था. एंड आई हर्ड दिस सॉन्ग एंड आई डिट नो दैट दिस नेक्स्ट सॉन्ग, मेरे कॉलर ने मेरे कॉल करके बताया कि यार दिस सॉन्ग हैज़ गॉन ऑन एंड बिकम अ सुपर हिट. इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स एंड टुडे इट हैज़ 9 billion व्यूज ऑन वन ऑफ द चैनल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट डैडी यांकी एंड टॉकिंग अबाउट डेस्पासितो.
1: Aye.

0: Absolutely fantastic beat. 9 years back, the song was released featuring Daddy Yankee and Luis Fonsi, and gone on to gather 9 billion views. And thank you for bringing the song back. I have danced and grooved to this song long time back. I just missed it. We'll be right back.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Aaja meri gaadi mein baith ja.
6: Baith jaau? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
7: Wo thoda overheating tha.
6: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट? मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 आवर्स at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories, and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
11: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
12: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है। आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

जी हाँ, सही स्टेशन पे सही टाइम पे ट्यून इन हुए हो, इसीलिए हमने शो का नाम रखा है जीले जरा। सो क्यों ना हम शाम को और थोड़ी रंगीन बना ले, क्यों ना आप और हम जीले जरा। यू ट्यून इन टू जीले जरा विद आरजे सौमिल, और रहूंगा मैं आपके साथ। पहुंच गया मैं आखिरी आवर ऑफ दिस शो कॉल्ड जीले जरा विद आरजे सौमिल। एवरी सैटरडे नाइट प्राइम टाइम वी ब्रिंग यू द रॉक एंड म्यूजिक दैट आई क्यूरेट एंड यू रिक्वेस्ट। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की। और बहुत क्यूट रिक्वेस्ट आई थी, इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि चलो पार्टी अभी बीच से लेके लेट्स टेक इट इंडोर्स, बट लुक्स लाइक पीपल वांट टू हैंग आउट ऑन द बीच इटसेल्फ। बॉनफायर लगा के पार्टी करने का टाइम आ गया है लगता है। देयर आर फ्यू सॉन्ग्स दैट आर स्टिल ऑन द बीच, तो लेट्स डू दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनता की डिमांड पे, पॉपुलर डिमांड पे। अगर आपके पास कोई बीच का सॉन्ग हो, आई वाज गोना टेक दिस पार्टी इंडोर्स, बट स्टिल इफ यू हैव अ बीच सॉन्ग फेयर गेम। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। और ये गाना मैंने नहीं बजाया तो फिर क्या बजाया सौमिल? थैंक यू, वेरी क्यूट कॉल कॉल्ड एंड रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग। कहो ना प्यार है द मूवी दैट लॉन्च

9720235555 है स्टूडियो का नंबर, और ये गाना मैंने नहीं बजाया तो फिर क्या बजाया सोमिल? थैंक यू, वेरी क्यूट कॉल कॉल्ड एंड रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग. कहो ना प्यार है द मूवी दैट लॉन्च्ड ऋतिक रोशन एंड द गॉर्जियस अमीषा पटेल, एंड ये गाना नहीं बजाया तो फिर थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड रिक्वेस्टिंग दिस ब्यूटिफुल ट्रैक. आइकॉनिक ट्रैक, आइकॉनिक स्टेप, हुक स्टेप.

जी हाँ, प्रोडक्शन द रोशन प्रोडक्शन दैट गेव अस ऋतिक रोशन एंड द गॉर्जियस अमीषा पटेल टेकन फ्रॉम कहो ना प्यार है टाइटल ट्रैक एंड व्हाट करियर्स दिस मूवी हैड लॉन्च्ड फॉर अस. चलिए लेके चलता हूँ, एक ज्योति से रिक्वेस्ट आई थी. इनफैक्ट आई हैव नेवर हर्ड दिस सॉन्ग. इश्क विश्क की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको. थोड़ी बहुत इश्क विश्क फरमाते हैं आपके साथ ऑन दिस ब्यूटिफुल सैटरडे नाइट.

जी हाँ, डूबा रे डूबा, इश्क वेश्क से लिया था हमने ये गाना। मैंने देखा नहीं था ये मूवी, और गाना भी मैंने देखा नहीं था, बट यस, इट्स एब्सोल्युटली अ फेयर गेम बिकॉज इट हैज द बीट एंड इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन द बीच। थैंक यू ज्योति फॉर कॉलिंग एंड रिक्वेस्टिंग दैट ट्रैक। अगर आपके पास कोई बीच का सॉन्ग हो, 9723555555 है स्टूडियो का नंबर। मेरे पास काफ़ी सारे सॉन्ग्स अभी भी है। इनफैक्ट व्हेन आई यूज्ड टू डू द कार्डियो बॉलीवुड डांस फिटनेस क्लासेस, there was two songs warm up that we used to do, and mere class mein warm up song was this song, kyunki yaar exercise to chodo, it was a dance party, and kabhi kabhi log bolte hain ki yaar I don't feel like working out, and I had the perfect warm up song for them, and the song is called, koi mujhe aake bolega ki yaar aaj I don't feel like, and I said shut up and bounce, just like this song taken from Dostana. This was the warm-up song that we had, and my goodness, what an iconic song this is. चलिए लेके चलता हूँ आपको सुनिधि चौहान की आवाज में जॉन अब्राहम एंड शिल्पा शेट्टी का मैजिक।

ब्रिंगिंग द बेस बैक, आई नीड सम हेल्प. मुझे बताइए आप, सलमान खान का कौन सा गाना है बीच पे? आई नो टू और थ्री सॉन्ग्स, बट इफ यू नो सलमान खान सॉन्ग्स ऑन द बीच, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और लगता है आज की शाम बीच पे ही गुजरने वाली है. 5:30 बजे से किया था हमने बीच का शो और बच जाएंगे 9, और फिर भी बच जाएंगे कई सारे गाने. सलमान खान का कोई बीच का सॉन्ग, कोई भी बीच का सॉन्ग, 9722355555 स्टूडियो का नंबर. यू ट्यून इन टू जी लजरा विद आरजे सोमल. इन द मीन टाइम

0: We miss you, Katrina.
1: Yes, we do, Katrina. We miss you. My goodness. This was such a beautiful track. This song has always been owned by Katrina. This has got Katrina written all over it. Disha Patni did a fantastic job once again. But the song is owned by Katrina, of course. मैंने पूछा था आपको कि यार सलमान खान के बीच सॉन्ग्स स्वैग से स्वागत तो बजाई दिया मैंने पहले और कोई सलमान खान के बीच सॉन्ग्स हो तो बताइए मुझे. और चलिए लेके चलता हूँ आपको एक गाने की ओर. यू ट्यून इनटू जीले जरा विद आरजे सोमल, क्योंकि यार जीने के है बस चार दिन, बाकी है बेकार दिन.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional.
0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर, पनेशिया।

0: is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: जी हाँ, स्वैग से करता हूँ आपका स्वागत है द लास्ट सेगमेंट ऑफ टुनाइट्स शो चीले जरा बता जाए सोमिल, बहुत मजा आया आपके साथ आज बीच बीच खेलने, तेरे मेरे बीच में वाला बीच नहीं, समुंदर किनारे वाला बीच, बहुत ही मजा आया. इनफैक्ट लव्ड द रिक्वेस्ट दैट वी वर गेटिंग एंड आई गॉट लॉट मोर सॉन्ग्स एडेड टू माई लिस्ट ऑन दिस थीम ऑफ बीच. जब गर्मी बहुत हो जाए तो यार बीच निकल पड़ते हैं. चलिए लेके चलता हूँ आपको अक्सा बीच. मैंने बताया था भाईजान के अगर कोई गाने हो आपके पास जो बीच पे फिल्माए गए हो, तो मैंने बताया था, मैंने बजाया था ब्रेक से पहले जीने के हैं चार दिन विच वॉज ऑन बीच विथ पीसी. चलिए अगले गाने की ओर लेके चलता हूँ मैं. गॉड तुसी ग्रेट हो.

ला इसे ही चराकी पता लो आज चलती क्या टेकन फ्रॉम गॉड तुसी ग्रेट हो भाई के सॉन्ग्स मैं बता बजा रहा था। अगर आपके पास कोई भाई का सॉन्ग हो बीच पे, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं भाई ने भी बहुत टाइम बिताया है बीच पे, जैसे कि ये गाना बजाया था गॉड तुसी ग्रेट हो तुझे अक्सा बीच दिखा दूँ। चलो इसी टोन टेम्पो ट्यून पे लेके चलता हूँ आपको एक अलग गाने की ओर। लेट्स टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ। रीज़न वाई वॉज डूइंग दिस शो ऑन द बीच इज़ टू फोल्ड, बिकॉज एक तो पहले बहुत ही गर्मी थी आज, और इतनी गर्मी में लोग अक्सर सोचते हैं कि यार कहीं चलते हैं, कहीं ठंडे मौसम की ओर चलते हैं, इधर गो टू द माउंटेंस और हिल स्टेशंस और गो टू द बीच। और दूसरा था दिस टुक मी डाउन द मेमोरी लाइन बैक इन द डे, जब मैं कॉलेज में था तो MTV जब नया नया आया था, केबल इंडिया में जब हर छत पे तार, केबल के तार यहाँ से वहाँ जा रहे थे, और वो टाइम पे MTV के चैनल पे शाम के टाइम पे एक शो आता था MTV ग्रूव, एंड दैट होल ग्रूव वाज लाइव म्यूज़िक विद यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रूविंग ऑन द बीच, एंड आई थॉट माय गुडनेस व्हाट अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट इज़ ऑफ MTV। एंड आई सेड गर्मी इतनी पड़ रही है तो आज बीच का मौसम है तो बीच पे ही टाइम गुजारते हैं। चलिए लेके चलता हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ओर।

व्हाट एन आइकॉनिक ट्रैक टेकन फ्रॉम बड़े मियां छोटे मियां. चलिए मेरे पास काफी सारे गाने हैं टू दैट विल टेक मी टू द एंड ऑफ द शो एंड आई हैव स्टिल फ्यू मोर रिक्वेस्ट. अगर आपका गाना मैंने नहीं बजाया तो तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि यार इधर इट केम इन द रिक्वेस्ट केम इन लिटिल टू लेट और द सॉन्ग हैड अ बीट दैट वॉज अ लिटिल टू स्लो. एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मुझे सागर किनारे गाने की. एंड यू नो वॉट आई विल डू, आई विल प्ले दैट सॉन्ग टू क्लोज द शो आउट. दैट वे आई विल ब्रिंग यू बैक होम सेफ अराउंड 9 o'clock. यू ट्यून इनटू जीले जरा विद आरजे सोमिल. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. और मैंने जैसे बताया था भाई ने बहुत ही टाइम बिताया है बीच पे यार, चलिए लेके चलता हूँ आपको पार्टनर की दुनिया में. इस बार ये गए थे गोविंदा के साथ टू थाईलैंड.

0: स्पीड में।
1: हाँ ये लोग करेंगे बड़ी स्पीड में। दैट वाज रेसी ट्रैक, लवली बीट बाय टोनी कक्कर, ऑफ कोर्स टोनी नेहा एंड आदित्य नारायण। बहुत ही अच्छा गाना था। थैंक यू जिमरन फॉर रिक्वेस्टिंग दिस ट्रैक। आई हैड हर्ड दिस सॉन्ग, आई प्लेड दिस सॉन्ग अ लॉट व्हेन इट हैड इनिशियली रिलीज्ड, देन आई फॉरगॉट अबाउट दिस सॉन्ग। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस सॉन्ग बैक। इसीलिए हमको बहुत मजा आता है कि हम इट्स नॉट जस्ट वॉट वी क्यूरेट, इट्स ऑल्सो वॉट यू एड दैट एड्स टू द शो। एंड बहुत ही मज़ा आया ये गोवा वाले बीच पे। एंड चलिए इसी के साथ लेके चलता हूँ नदर रैप सॉन्ग। एमयूए बनता यार बनता है। आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ द सॉन्ग बिकॉज़ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय नहीं है मेरे पास, कुछ ही समय है और कई सारे सॉन्ग्स हैं। दयावान का सॉन्ग मुझे बजाना था यार, चाहे मेरी जान तू ले ले, शायद नहीं बजा पाऊंगा मैं वो सॉन्ग। कोई नहीं, चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और

अभी जाके पहले टिकट मैं भी कटा रहा हूँ. सुनने में आया तो लंदन में रहती है. अभी जाके पहले टिकट. दिस सॉन्ग दिस वॉज ऑफकोर्स फिर से मचाएंगे. हिज फर्स्ट हिट वॉज मचाएंगे एंड देन ही केम बैक विद फिर से मचाएंगे एंड दिस अगेन वेंट ऑन टू कलेक्ट 700 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब. कैन बिलीव दैट. एमीवे बनता है यार, बनता है, जरूर बनता है, क्यों नहीं बनता है. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और एक दो लाइन दयावान की सुना ही देता हूँ, फिर मिले ना मिले मौका.

0: फ्रॉम द मूवी दयावान, ओरिजिनल वर्जन वॉज नायकन। इसमें देखा था आपने फिरोज खान को और विनोद खन्ना को। एंड आज का शो यार, जैसे मैंने बताया, 3.5 आवर्स आपके साथ बीच पे हमने स्पेंड किए, हमारे साथ आपने बीच पे स्पेंड किए, और बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। इनफैक्ट टिपिकली वी डू क्लबिंग वन ऑफ दीज वीकेंड्स, विल गो क्लबिंग, एंड आज बीचिंग था, फिर कभी दिन करेंगे क्लबिंग, और देन विल गो बार हॉपिंग वन ऑफ दीज वीकेंड्स। अभी तो हमने क्रूज भी नहीं लिया यार, देर वॉज सो मेनी सॉन्ग्स दैट आर पिक्चराइज्ड ऑन बोट्स एंड क्रूजेस, एंड किसी दिन करेंगे उस थीम पे भी शो। आज तो सिर्फ हमने बीच पे टाइम गुजारा आपके साथ, 4 घंटे, 3.5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला, और गाने की लिस्ट तो इतनी है कि 4, 4.5 घंटे तक भी चल सकती है। चलिए चलते चलते मैं आखिरी 2 गाने सुनाते चलता हूँ मैं आपको, और थोड़े फास्ट बीट थोड़े स्लो बीट से फिनिश करते हैं आज का शो, चीले जरा विद आरजे सोमिल।
1: ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

ताई चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार ऐसा नहीं चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार।

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.
2: नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं.

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
3: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: and let the good times roll.
1: आई नी तेरा सूट भी, आई नी तेरी साड़ी भी, आई नी तेरा लहंगा, तेरी ड्रेस ते तेरा कोका डिजाइनर।

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की है आफत कहती

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
5: Away with Club Fun Asia.
6: I love it.
5: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो।
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी।
1: रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
2: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: 104.9 FM Funny Show. Funny Show. Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment.
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

Bringing South Asia closer, more closer. Phonasia 104.9 FM.

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up. AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

से फ्रॉम चेन्नई टू धारावी टोटल गलीजी मची मोदी नकानी काली गोली सोड़ा पोल என்ன சீண்டி நாக்க பொங்குக இப்ப பிள்ளை எங்களை பாரு ஊருக்குள்ள தாறுமாறு தாறுமாறு

0: क्लास शुरू करें?
1: Funny Show Radio 104.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: FM.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: अब तू आ गई है।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it.

अट्टकुड़ी अट्टकुड़ी अट्टकुड़ी चाकू तलवार ये छुरियां कुड़ी आदि गवर्नमेंट कर दी नमस्ते ब्लॉन्ड लट्टी नते चिटियां हाय कुड़ी हल्लो कुड़ी मजा मजा लल्लो कुड़ी सॉल्टी स्पाइसी ते मिठियां।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

संडे गपशप के तमाम श्रोताओं को हार्दिक स्वागत. वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एक रूप, आप सबका स्वागत करती हूं. जी हां, आज जो है तीसरा या सेकंड संडे है एक्चुअली जून के महीने का, और 14th डेट है, आज डे है, जून 14th इज़ द डेट. और आप सब का स्वागत है इस खूबसूरत दिन पर. खूबसूरत टाइम है जब ये शो आता है, सुबह सुबह संडे को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे का ये शो होता है. मैं आपके साथ रहती हूँ यहाँ पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ यहाँ पर पूरा पूरा मेरा और इस शो का साथ निभाएंगे. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. बस आप करना क्या है, इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके मुझे बता दीजिए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. संडे गपशप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो की फ्रीक्वेंसी. थैंक यू बोलती हूँ आप सबका, आप जुड़ जाते हैं इस शो के साथ और फिर आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं. सो थैंक यू सो मच. बस एक और खूबसूरत सा दिन, आज नया संडे है और नया दिन है एंड नए हफ्ते की शुरुआत है. जून 14th इज़ द डेट टुडे एंड बस यूं ही जल्दी जल्दी जो है अच्छा अच्छा टाइम निकल जाता है. मिडल ऑफ द मंथ ऑलरेडी, 6th मंथ के भी हम मिडल में आ गए हैं. अब इसके बाद जो है बस 6 मंथ्स, लेस दैन 6 मंथ्स बचे हुए हैं 2026 के, ये भी जल्दी से गुजर जाएंगे. आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के लिए और आगे आने वाले समय के लिए. सो प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन. दिस इज़ आरजे एक रूप.

2022 में ये एक फिल्म आई थी जिसका नाम कला, और बहुत ज़्यादा हिट तो नहीं हुई थी, लेकिन जो एक हटकर फिल्में देखते हैं जिनको थोड़ी नॉन पैरेलल वेल पैरेलल सिनेमा से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है, उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा शायद। और ये ठीक ठाक चल गई थी फिल्म। एंड इस क्या ये जो सॉन्ग है जिसको शिरीषा भगवतुला ने गाया है, ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ हुई थी फिल्म। एंड कहीं ना कहीं एक दूसरी फिल्म से इस को अडेप्ट किया था। ओटीटी पर रिलीज़ हुई थी एंड इसको काफ़ी सारे नॉमिनेशंस मिले थे। इट वॉज़ अ पॉपुलर फिल्म बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स एंड द म्यूज़िक। नाइन सेवन टू टू थ्री फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव इज द नंबर टू द स्टूडियो। प्लीज कीप द कॉल्स कमिंग इन।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

My Time Equity, which is led by CPA Sudhir Pai, is here in our community, and they have been helping individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management. और ये जो हैं आप इनके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं सीपीए सुधीर पाए, बिकॉज इनके पास रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ मैनेजमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट, और यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, देन माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद सीपीए सुधीर पाई थ्रू हिज फोन नंबर विच इज 4697021272. जी हाँ, 4697021272. एंड उनकी जो वेबसाइट है माई टाइम एक्विटी .com.

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
2: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ primarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
9: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
6: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
10: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

वेलकम बैक. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आप सबका स्वागत करती हूं एक बार फिर से. शो का आधा घंटा हो चुका है. 7 बजे से 10 बजे तक ये शो आता है. लेकर आती हूं इसको मैं, यानी कि एकरूप, आरजे एकरूप है. मेरा नाम एकरूप है, नाम आरजे तो चलिए क्योंकि काम है वैसा, तो इसीलिए वो एक ऐड हो जाता है. ये दो लेटर्स ऐड हो जाते हैं. 7 to 10 इज द टाइमिंग फॉर द शो. और आपके साथ आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. आपके फरमाइशी सॉन्ग्स मैं यहाँ पर लाइन अप भी कर रही हूँ. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. इफ़ यू हैवन कॉल्ड इन येट एंड यू आर सिटिंग बाय द फोन, यू आर लिसनिंग टू द रेडियो, यू आर लिसनिंग टू द शो, तो आप ज़रूर कॉल करके मुझे बता दीजिए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे. आई एम इन योर कार्स, आई एम इन योर हाउस. अगर आप घर में हैं, रेडियो ऑन है, स्मार्ट डिवाइस के थ्रू आप सुन रहे हैं, और इफ़ यू आर ड्राइविंग, बहुत अच्छा मौसम है, खूबसूरत दिन है आज डैलस में. गर्मी तो वैसे है, डेफिनेटली इट्स ऑलरेडी इन द लेट आई गेस अपर 80s में तो ऑलरेडी है, और आगे भी बस टेम्परेचर बढ़ेगा ही आज के लिए. सो इट्स अ ब्यूटिफुल डे लाइक ऑलवेज. आप अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन रहे हैं इस शो के थ्रू. अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नाउ इज़ अ गुड टाइम. जिसे इच्छा होती है वो आपत्ति में भी अवसर देखता है. जिसे इच्छा होती है वो आपत्ति में भी अवसर देखता है, और जिसे इच्छा नहीं होती तो केवल बहाना ही देखता है. सो इफ़ द इंटेंशंस आर पॉजिटिव, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स समथिंग एंड यू हैव द इंटेंशंस, देन यू आर गोइंग टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी विद एवरी हर्डल और चैलेंज. बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड ही दिखेगी. येस, देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट जिसकी इंटेंशंस होती हैं वो हमेशा एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं. बट अगर इंटेंशंस नहीं है, चाहते नहीं हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाते हैं. सो आप किस कैटेगरी में बैठते हैं? आप आपत्ति में अवसर ढूंढते हैं या फिर आप बहाना बनाते हैं? ये आपके पर्सपेक्टिव पर, आपके इंटेंशंस पर, आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है. तो ये है आज की अच्छी सोच. शो में एक अच्छी सोच लेकर आती हूँ. बहुत लेक्चर वाला इंटेंशन नहीं होती मेरी, लेक्चर देने की इंटेंशन नहीं होती, बट समथिंग दैट मेक्स अस रियलाइज, समथिंग दैट मेक्स अस थिंक ओवर सम फ्यू थिंग्स दैट वी समटाइम्स फॉरगेट टू थिंक. Because life is so busy, the whole day we are running around. कुछ नहीं भी करते तो भी इतना कुछ lined up होता है, और कुछ कर रहे होते हैं तो वैसे ही कई बार ध्यान नहीं होता, realize नहीं करते हम. So anyway, this was a little 5 cents from me. आपके पास भी कोई अच्छी सी बात है share करने के लिए that you would like to share with me or with the listeners, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं. आई एम हैप्पी टू टेक योर कॉल्स ऑन एयर, और इफ़ यू जस्ट वांट टू शेयर इट विद मी दैट इज़ फाइन टू. सो 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. आई सो लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू.

इतना अच्छा म्यूजिक, आरडी बर्मन का म्यूजिक आवाज तो ऑफ कोर्स आप पहचान गए होंगे, लता जी की आवाज। ऐसा समा ना होता, ये फिल्म का नाम जमीन आसमां, दैट केम आउट इन 1984। इसमें संजय दत्त एंड अनीता राज फिल्म में म्यूजिक में सॉन्ग में नजर आ रहे हैं। आर डी बर्मन का म्यूजिक बहुत पॉपुलर एंड 70s में तो आई थिंक ही वॉज द इट म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, एंड देन 80s में भी इन्होंने अच्छा म्यूजिक दिया करते करते। 1942 अ लव स्टोरी वॉज द लास्ट फिल्म फॉर विच ही आर डी बर्मन साहब गेव द म्यूजिक, एंड जो लास्ट फिल्म 1942 अ फिल्म अ लव स्टोरी का जो म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन में बर्मन जी ने, वो तो आई थिंक बहुत ही आइकॉनिक, एवरग्रीन एंड मेमोरेबल म्यूजिक उन्होंने बना दिया। बट दिस वन टू इज अ जेम, बहुत अच्छा सॉन्ग। थैंक यू हमारे लिसनर जिन्होंने इस गीत की रिक्वेस्ट की। अब जो अगला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो हम अभी सुन रहे थे सॉन्ग। सो आई एम जस्ट गोना प्ले इट एंड आप सुनिए। छोटा सा सॉन्ग है, 3 मिनट का ही सॉन्ग है। तो हमारे लिसनर सलमान जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की।

ये फिल्म का नाम आंखों की गुस्ताखियां। ये हमारे लिसनर को याद नहीं आ रहा था कि कौन सी फिल्म का सॉन्ग है, बट ही न्यू दैट दिस इज़ द सॉन्ग दैट ही वांटेड टू लिसन टू। और ये रस्किन बॉन्ड की एक बुक आई थी, शॉर्ट स्टोरी आई थी, द आइज हैव इट। सो ये उसी पर बेस्ड है। विक्रांत मैसी जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड का रोल प्ले करते हैं, एंड इसमें शनाया कपूर जो कि द फेमस कपूर, संजय कपूर की बेटी हैं। तो ये हम सलमान की रिक्वेस्ट पर सॉन्ग सुन रहे थे। हमारे एक और लिसनर हैं जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, हम गोना प्ले इट राइट अवे। ये हमें अगेन 80s की तरफ लेकर जाएगा। ये वादा रहा।

1982 की ये इतनी सुपरहिट फिल्म जिसमें ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों ढिल्लन एंड टीना मुनीम और ये तीनों इस मूवी में नज़र आए थे. बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था. द प्रॉमिस, जो कि डैनियल स्टील की एक काफ़ी पॉपुलर हाईली एक्लेम्ड नॉवल है, उस पर ये फिल्म बनी थी. ये वादा रहा. आर डी बर्मन अगेन, वॉट अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, वॉट अ टैलेंटेड एंड प्रोडिजी. इतने लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर इंडस्ट्री में उनका ये म्यूजिक, और इसमें बहुत सारे और भी एक्टर्स थे. द फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर हिट फिल्म दैट वाज डायरेक्टेड बाय कपिल कपूर. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. अब जो अगला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, ये फेयरली न्यू सॉन्ग है, 2008 की सुपर हिट फिल्म जोधा अकबर का ये सॉन्ग.

रही शरीफुद्दीन की बात, आपको चौकन्ना रहना होगा। वो हमारे भी काबू से बाहर हो गया है।

0: जिसमें अनाज को मुगल सल्तनत की इजाजत के बगैर ना तो खरीदा जा सकेगा और ना ही बेचा जा सकेगा।
1: और एक मशवरा, कुछ इलाके कहत और सूखे की मार झेल रहे हैं, उनसे किसी भी किस्म का महसूल वसूल ना किया जाए।
2: हाँ खान बाबा, दोनों मशवरों पर कानूनी तौर पर फौरन अमल किया जाए।
0: यहां पनाह।

0: अल्लाह, ये क्या कर दिया आपने मल्लिका? शहंशाह को पता चलेगा तो इनके साथ साथ मुझे भी आजाद कर देंगे।
1: आपकी आजादी से ज्यादा इनकी आजादी जरूरी है।

0: जोधा हमारा जाने का मन तो नहीं है, पर क्या करें, ये रियासती दौरा बहुत जरूरी है।
1: जोधा अकबर 2008 की सुपर हिट फिल्म, ये थोड़ा सा सॉन्ग और सुनेंगे एंड वी आर गोइंग इनटू द ब्रेक, उसके बाद आके आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स एंड और भी बातें। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एट ऑन 104.9 FM पानीजा रेडियो। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एकरूप। आई विल बी हियर इन द स्टूडियो अंटिल 10 o'clock।

वेलकम बैक। शो का एक घंटा हो चुका है, टाइम का तो वैसे पता ही नहीं चलता जब यहाँ पर आ जाओ। तो पहले ये शो मेरा 2 घंटे का होता था, बहुत साल जब से मैंने ये शुरू किया था, अबाउट 12 ईयर्स, 12-13, ये अभी 13th ईयर चल रहा है इस शो का। तो तब जो है 8 से 10, एंड अब इस साल से 2026 से 7 to 10, 7 से 10 हो गया है ये शो, और टाइमिंग्स एक घंटा बढ़ गए हैं। तो जब शुरू हुआ था 3 घंटे, तो मुझे लगता था ओ गुडनेस, 3 घंटे थोड़ा लंबा ना हो जाए, 7 बजे सुबह इंस्टेड ऑफ 8 o'clock कोई लोग सुनेंगे, हमारे श्रोता जुड़े होंगे या नहीं। सो देर वर मैनी क्वेश्चंस इन माय माइंड, एंड जब जनवरी में ये शुरू किया था मैंने, तो 1-2 हफ्ता तो खैर हमारे लिसनर्स को पता ही नहीं था कि ये शो का टाइम एक्सटेंड हो गया है, 3 घंटे का हो गया है। लेकिन जब पता चला तो उसके बाद फिर आप सब की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गई, एंड बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। सो थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़ते हैं इस शो के साथ, हमारे साथ 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो के साथ। वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, वी आर अ टाइट निट कम्युनिटी, इट इज़ लाइक अ फैमिली। तो आप सबके फ़ोन कॉल्स के लिए थैंक यू, आपके अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करने के लिए थैंक यू, एंड आई एम हियर इन द स्टूडियो अंटिल 10 o'clock। लाइक आई सेड, 1 घंटा हो चुका है, एंड अब वेल मोर देन एन आवर 8:07 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में, एंड आई थिंक सेल फोन के क्लॉक्स में भी यही टाइम है। सो आई एम हियर अंटिल 10 o'clock, थैंक यू सो मच, आई जस्ट कैंट थैंक यू ऑल इनफ। दिस इज RJ एकरूप वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन संडे गपशप 104.9 FM फाइनेंशिया रेडियो। हमारे लिसनर जिन्होंने 2 सॉन्ग्स बैक टू बैक जिनकी रिक्वेस्ट की है, तो आई एम गोना प्ले दो सॉन्ग्स बैक टू बैक, सो हियर यू गो।

1962 की ये सुपरहिट फिल्म साहेब बीबी और गुलाम, इसमें मीना कुमारी जी थीं और गुरुदत्त एंड अच्छे अच्छे एक्टर्स इसमें. इनफैक्ट शशि कपूर साहब को पहले चूज़ किया था कि वो प्ले करेंगे रोल गुरुदत्त साहब का, लेकिन somehow after a long meeting the things did not go through as planned, and then फिर वो इरिटेशन में आके दोनों पार्टीज ने जो है डिक्लाइन कर दिया एक दूसरे को, एंड देन द मूवी वेंट टू गुरुदत्त साहब. इसमें मीना कुमारी जी, शी वन हर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फ्रॉम द फिल्म फेयर कैटेगोरी फॉर द बेस्ट एक्टर, एंड इसमें जो है डायरेक्टर अबरार अलवी को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था. इनफैक्ट ये फिल्म जो है जो उस टाइम पर 1962 में जो और भी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी हिंदी या और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस की बहुत कंपेरेटिव सुपरहिट फिल्में थी, उनको सरपास करके इस फिल्म को नॉमिनेट किया एंड फाइनलाइज करके भेजा ऑस्कर के लिए, एकेडमी अवार्ड्स के लिए. फिर आगे जाकर तो ये जो है उसकी नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं आई बेस्ट फॉरेन फिल्म इन द ऑस्कर्स अवार्ड, बिकॉज जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंसेज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने गुरुदत्त साहब को लिखा कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर अ वुमन टू बी अल्कोहलिक. तो इस रीज़न से इस फिल्म को नॉमिनेट नहीं, फाइनल नॉमिनेशन नहीं मिली एकेडमी अवार्ड्स. तो दिस इज़ 1962 और अच्छी फिल्म थी. सॉन्ग्स ऑफकोर्स हेमंत कुमार के जो हैं कॉम्पोजिशन, जो हेमंत कुमार साहब जो गाते भी हैं उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, आशा जी की आवाज़ है, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कैची म्यूजिकल नाइस सॉन्ग. इसमें कोरियोग्राफी में देख रही थी इस सॉन्ग की, लाइटिंग का इफ़ेक्ट इतना अच्छा है, आप एज अ व्यूअर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप सिर्फ वो जो मेन जो गा रही हैं जो डांस कर रही हैं सिर्फ आपकी नज़र उन पे जाती है. देर आर बैकग्राउंड डांसर्स टू, लेकिन वो जो है डार्क लाइट में है तो उनकी सिर्फ शेडो या फिगर दिखता है कि देर इज समबडी डांसिंग, बट आपको उनका चेहरा नहीं नज़र आता. चेहरा सिर्फ जो मेन डांसर है इस सॉन्ग में उन्हीं के ऊपर लाइट है, एंड शी इज़ द ओनली वन दैट इज डांसिंग इन लाइट. बाकी जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं वो सब अंधेरे में है, सो यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और इन्हीं पर नज़र रहती है. द स्क्रीन इज़ फुल येट यू ओनली गेट टू सी द मेन डांसर. सो ये भी एक कमाल है उस टाइम की फोटोग्राफी का, उस टाइम के डायरेक्शन का. ब्यूटिफुल मूवी, लवली सॉन्ग्स, एंड जो है ये हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग को रिक्वेस्ट किया, सेम नॉट सिंगर, हमारे जो लिसनर हैं, डिड आई से सिंगर, एनीवे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग को रिक्वेस्ट किया उन्होंने ही ये वाला गीत भी सुनना चाहते हैं, वो इसकी रिक्वेस्ट की उन्होंने. फिल्म का नाम आरजू, अगेन आशा जी की आवाज़ में.

शंकर जय किशन का इतना मैजिकल म्यूज़िक इस फिल्म के लिए. फिल्म का नाम आरजू दैट केम आउट इन 1965. रामानंद सागर जी ने इसको डायरेक्ट किया, वही जिन्होंने रामायण भी बनाई थी. आगे चलकर साधना जी थी इस फिल्म में, राजेंद्र कुमारन, फिरोज़ खान जैसे सभी बहुत अच्छे खूबसूरत एक्टर्स. द फिल्म वॉज डेफिनेटली अ ब्लॉकबस्टर बिकॉज ऑफ द स्टोरी, एक्टिंग, एंड नो डाउट बिकॉज फॉर द म्यूज़िक एज वेल. शंकर जय किशन का बहुत ही अच्छा म्यूज़िक. सो थैंक यू हमारे लिसनर जिन्होंने इन दोनों सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट की. एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं पूरा सॉन्ग प्ले करूं एंड बैक टू बैक ये जो है प्ले हो जाएं. हमारे एक और लिसनर हैं जो कहते हैं कि ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए. सो हियर यू गो. एंड ये अगेन शंकर जयकिशन का ही म्यूज़िक है. फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
3: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
12: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
13: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
14: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Welcome back. Thank you very much. You are tuned in to 104.9 FM Fanasia Radio. This is RJ Group welcoming you all once again. Sunday Gupshup 972-235-5555 and 104.9 FM Fanasia Radio. We always welcome you. We always love to have you with us, and we always wish to be with you in your cars or in your homes. हमारे बहुत सारे लिसनर्स कह रहे हैं कहाँ थी मैं लास्ट वीकेंड. आई वाज एक्चुअली नॉट इन टाउन, तो इसीलिए मुझे लास्ट वीकेंड छुट्टी लेनी पड़ी, यानी कि संडे को. लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ एंड आई एम हियर इन द स्टूडियो 7 to 10 फॉर 3 hours एवरी संडे. संडे गपशप और आपसे बातें होती हैं, आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स मैं यहाँ पर प्ले करती हूँ. बस यूं ही जो है ये 3 घंटे बहुत अच्छे निकल जाते हैं. योर ड्रीम होम may be closer than you think with Dream Home Mortgage. They are a wonderful business. Hussain Panjwani is the business owner of this business called Dream Home Mortgage, and they have been around since 1998. They have helped families across the nation achieve their home ownership dream because they are licensed in all 50 states. Their expert team and experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs. Either you are first home buyer, you are upgrading or refinancing. Definitely keep in mind Hussain Panjwani, 972-245-5626, or you can visit his website, which is dreamhomemortgage.com. एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का है, राज कपूर साहब पर फिल्माया गया है, उन्हीं की फिल्म है, 1966 में आई थी, तीसरी कसम. उसका सॉन्ग हमारी लिसनर सुनना चाहती हैं, सो हियर यू गो.

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: तीसरी कसम जो आई थी 1966 में मुकेश साहब एंड राज कपूर जी पर ये फिल्म आया गया. उनकी आवाज़ वहीदा रहमान जी भी हैं इस फिल्म में. शी लुक सो यंग, सो ब्यूटिफुल एंड बहुत ही अच्छी फिल्म थी तीसरी कसम 1966. आज है जून 14th. आज एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनका बर्थडे है. ही इज टर्निंग 80 टुडे. ही हैज टर्न्ड 80 टुडे. ही वाज द 45th प्रेसिडेंट फ्रॉम 2017 टू 2021 एंड देन ही इज द करंट प्रेसिडेंट, द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. He was born into a very wealthy family and आगे चलकर इन्होंने जो है अपनी undergraduate University of Pennsylvania, which is an Ivy League, is where he graduated from with a bachelor's degree. And of course, like I said, he was born into a very wealthy family, so he had family businesses going on that he acquired, and then that he started to resume. He just joined those businesses, including hotels, casinos, golf courses, etc. So he is a very highly influential president, highly influential personality, not only in the U.S. but also globally. और ये उनका सेकेंड टर्म है. ही हैज़ टर्न 80 टुडे. जून 14th 1946 इज व्हेन ही वाज बोर्न इन क्वींस न्यूयॉर्क.
1: जोड़ी मऊआ का प्रेमी आज भी जैसे होता है.

आज एक और फिल्म है. वेल, चेंजिंग टॉपिक्स हियर, कमिंग बैक टू द मूवीज. आज एक फिल्म है जिसने 25 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं इंडस्ट्री में. एंड इनफैक्ट टू ऑफ द फिल्म्स दैट रिलीज्ड ऑन द सेम डे विद अ वेरी टफ कंपटीशन टू ईच अदर. एंड इनफैक्ट इन दोनों का जॉनरा इतना फ़र्क था कि उन्होंने एक दूसरे को तो कम्पीट किया ही और ऑडियंस को जितना एंटरटेन किया. आई थिंक नो अदर टू बिग मूवीज़ रिलीजिंग ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम हैव गिवन सच अ वंडरफुल वैरायटी टू द ऑडियंस. मैं बात कर रही हूँ लगान, दैट रिलीज्ड ऑन जून 15, 2001, एज वेल एज गदर, एक प्रेम कथा, दैट ऑल्सो रिलीज्ड ऑन जून 15, 2001. सो इन दोनों फिल्मों को 25 ईयर्स हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं. एंड ये फिल्म्स इतनी मेमोरेबल हैं, इतनी अनफॉरगेटेबल हैं कि इनका जो इम्पैक्ट है अभी तक भी इंडियन ऑडियंस एंड ग्लोबल ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट लगान वेंट ऑन टू मेकिंग द नॉमिनेशंस लिस्ट एट द अकेडमी अवार्ड्स. एंड आई थिंक इस फिल्म के बाद कोई ऐसी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की या और रीजनल सिनेमा की कोई भी फिल्म नहीं है जिसने ऑस्कर अवार्ड्स की नॉमिनेशन में अपनी एक जगह बनाई हो. दिस वॉज वन ऑफ दोज लकी फिल्म दैट मेड इट. एंड आशुतोष ग्वारिकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया. मैं जहाँ पर बैठी हूँ ना स्टूडियो के अंदर, मुझे कुछ पता नहीं है कि वेदर कैसा है बाहर, अनलेस आई लुक एट माई फोन वेदर और ऑन द कंप्यूटर. टेक्स्ट आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत सारी बारिश हो रही है जहाँ पर ये स्टूडियो हमारा लोकेटेड है. लगान की बात हो रही है, सारी फिल्म जो फसल क्रॉप क्रिकेट पर रिलेटेड है और किस तरह ये बारिश का इंतज़ार करते हैं कि बारिश आएगी तो हमारी क्रॉप अच्छी होगी तो हमारी जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी. तो ये वाला जो सॉन्ग है आई थिंक सूट्स वेल. हैप्पी 25th टू दिस मूवी, टू आशुतोष ग्वारिकर, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल that have made this film. And I guess congratulations to all the viewers also of this film. Ye film bahut hi landmark rahi hai Hindi movie industry ke liye. Unforgettable film. It's a gem given to us in the form of a Lagaan. A.R. Rahman ka music.

इस मूवी का जो ओरिजिनल अनएडिटेड जो रन टाइम था दैट वाज अबाउट 7.5 to 8 hours. आप सोचिए, अगर आप मूवी देख रहे हैं और 8 घंटे की मूवी देख रहे हैं, 8 घंटे मीनिंग आप पूरा दिन काम पे होते हैं, तो सोचिए इट्स एज लॉन्ग एज योर वर्क आवर. तो इसको काफ़ी एडिट किया, काफ़ी इसकी जो है कटिंग एंड ट्रिमिंग हुई, तो जाकर ये तब भी इतनी लंबी फिल्म थी और इतनी इनक्रेडिबली शॉट, इनक्रेडिबली रिटन एंड मेड. दिस फिल्म कॉल्ड लगान दैट जस्ट कम्प्लीटेड इट्स 25 ईयर्स. इट गॉट रिलीज ऑन June 15th of 2001. तो अब 25 साल हो गए हैं इस आइकॉनिक फिल्म को, जिसने एक बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट के जैसा काम किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए. लाइक आई सेड, एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स में इसकी नॉमिनेशन हुई थी. द फाइनल लिस्ट दैट वॉज एक्चुअली ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी, उसमें ये जो है लिस्ट में उसका नाम, इस फिल्म का नाम था. इट इज़ एन एपिक स्टोरी टेलिंग फिल्म. बहुत ही मेहनत लगी थी इस फिल्म को बनाने में. लाइक आई सेड, 7.5 hours to 8 hours का जो ओरिजिनल अनएडिटेड जो रन टाइम था इस फिल्म का, इतना लंबा था. और इसमें बहुत सारी मेहनत गई थी, बहुत लोगों ने हार्डवर्क किया था इसके एक्टर्स ने. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओनली फिल्म, दी ओनली बॉलीवुड हिंदी फिल्म दैट हैड द मोस्ट नंबर ऑफ ब्रिटिश एक्टर्स इन द फिल्म, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैड टू शो द ब्रिटिश आर्मी, द ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश क्रिकेट टीम एज वेल. तो बहुत ही अच्छी, आइकॉनिक, यूनिक फिल्म बनी. आज भी 25 साल के बाद भी हम इस फिल्म को इतना फॉन्डली याद कर रहे हैं. भुवन का जो कॉस्ट्यूम था, भुवन की जो इयररिंग्स थी, आमिर खान ने भुवन का रोल प्ले किया था. वो जो है इनका लुक काफ़ी, ऑफकोर्स आशुतोष ग्वारिकर हैं तो वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इंट्रिकेसीज में जाते हैं. हाउ एवर, इट इज़ अ लिटल फनी कि जो इनके इयररिंग्स दिखाए थे भुवन के इस फिल्म में, वो एक्चुअली किरण राव की क्लॉसेट में से लिए थे. उनकी ज्वेलरी कलेक्शन, जो पर्सनल उनकी ज्वेलरी कलेक्शन है, उसमें से लिए थे. एंड उस टाइम पर किरण राव इस फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्ट एडिटर थी, एंड बाय देन शी हैड नॉट बिकम हिज वाइफ. तो किरण राव द सेम वन दैट मेड लापता लेडीज. इस फिल्म की जब शूटिंग हुई थी, टाइमिंग देखिए, वैसे तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, बट टाइमिंग देखिए, द क्रू ऑफ दिस फिल्म गॉट लकी बिकॉज दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट भुज बाय देन. जब ये फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई तो कुछ दिनों में ही यहाँ पर जो है, आफ्टर दैट देर वॉज अ ह्यूज मैसिव अर्थक्वेक दैट डेवस्टेटेड द होल एरिया. और फिर जब ये फिल्म रिलीज हुई, द क्रू एंड द मेंबर्स ऑफ द फिल्म ऑफ द मूवी, दे हेल्प्ड रेज फंड्स टू रीबिल्ड द प्लेस. बहुत सारी बातें हैं इस फिल्म की जो काफी अनफॉरगेटेबल रही हैं. लगान, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म बिकॉज द फिल्म हैज़ कम्प्लीटेड 25 ईयर्स, द 25 golden years, सिल्वर एनिवर्सरी है वैसे तो इस फिल्म की. वी गोना लिसन टू दिस वन मोर सॉन्ग, मितवा, एंड दिस सॉन्ग विल टेक अस इनटू द ब्रेक. उसके बाद मैं आपसे एक ट्रिविया, वेल एक गिव अवे है, तो वो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद लगान.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Aaja meri gaadi mein baith ja.
6: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
7: Wo thoda overheating tha.
6: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
12: Jis baat ka dar tha, wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
14: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

वेलकम बैक. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लगान की, बिकॉज दैट फिल्म हैज़ जस्ट कंप्लीटेड 25 ईयर्स इन द इंडस्ट्री और इतनी सक्सेसफुल आइकॉनिक फिल्म बनी थी. इट वाज ट्रूली अ मास्टरपीस एंड आमिर खान इज़ वेरी प्राउड टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. उन्होंने बहुत अपना जो है इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया एज द लीडिंग एक्टर एंड ऑल्सो बिहाइंड द सीन्स जो हैं उनकी वाइफ रीना दत्त भी इन्वॉल्व थी. आशुतोष ग्वारिकर हु वाज नॉट एन एलियन और नॉट फॉरेन टू द स्क्रीन, उन्होंने खुद भी एक्टिंग की हुई थी बड़े छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर भी बिफोर दिस फिल्म, और जो है बिहाइंड द सीन्स भी काम किया था. उनकी मुलाकात आमिर खान के साथ 1984 में हुई थी एंड देन दे डिड कम टुगेदर फॉर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स. आपको याद होगा एक फिल्म 1995 में आई थी बाजी, जिसमें आमिर खान थे. वो फिल्म उनका डायरेक्टेड थी आशुतोष ग्वारिकर से ही, एंड उन्होंने आशुतोष ग्वारिकर डायरेक्टेड दैट फिल्म कॉल्ड बाजी दैट केम आउट इन 1995. आगे चलकर आशुतोष ग्वारिकर ने खुद ने जो है सर्कस में काम किया था, सीआईडी में भी काम किया था, एंड देन नाम फिल्म जो आई थी 1986 में चमत्कार विद शाहरुख खान एंड उर्मिला मटोंडकर, उसमें भी वो नज़र आए थे. कभी हाँ कभी ना अगेन शाहरुख खान एंड जो है उसमें भी इकट्ठे ये लोग नज़र आए थे. सो शाहरुख खान के साथ भी अच्छे टर्म्स थे, आमिर खान के साथ भी वो उनको भी जानते थे. समहाउ लगान had to go in to Aamir Khan's lap and he became a significant part of the project. So Lagaan that just completed its 25 years in the industry and I am just talking about that film. Uske hum kuch gaane sune, humne kuch uske baare mein baatein ki. Lots to talk about the film, lots to remember about this film. Itni iconic film rahi aur usme jo hai Aamir Khan ke saath ek badi cute actress jo ki छोटे पर्दे पर नज़र आया करती थी उन दिनों, जी टीवी पर एक शो आता था उसकी, वो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं लीडिंग लेडी थी. ग्रेसी सिंह की मैं बात कर रही हूँ एंड शी सरपास्ड सो मेनी अदर फीमेल्स ड्यूरिंग द ऑडिशन टू बी अ लीडिंग लेडी ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट कॉल्ड लगान. सो शी डेफिनेटली फील्स वेरी ऑनर्ड, वेरी फॉर्चुनेट टू बी प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ आमिर खान इन द फिल्म. भुवन उनका नाम, गौरी उनका नाम, एंड इन दोनों ने बहुत ही कमाल का काम किया था इस फिल्म में जिसका नाम लगान. आशुतोष ग्वारिकर हिमसेल्फ हैज़न्ट डायरेक्टेड सो मेनी मूवीज़ लेटली. जोधा अकबर भी उन्हीं की थी एंड बहुत अच्छी बनी थी. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट स्वदेश, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स स्वदेश, जिसमें शाहरुख खान प्लेड द लीडिंग एक्टर, तो वो भी आशुतोष ग्वारिकर की ही थी. ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक और फिल्म को हुए हैं क्वाइट अननोन, लेकिन जो है उसका जो टाइटल ट्रैक है वो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था. अच्छा गाना है तो मैंने यहाँ पर लाइनअप किया हुआ है. फिल्म आई थी लव के लिए कुछ भी करेगा, अगेन 2001 की ये फिल्म जून 29th को रिलीज़ हुई थी. उसका सॉन्ग सुनते हैं एंड देन आई हैव अ ट्रिविया, नॉट अ ट्रिविया बट आई हैव अ गिव अवे. ऑफ कोर्स आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन, नथिंग टू डू विद दीज फिल्म्स और द सॉन्ग्स दैट आई एम प्लेइंग. एक डिफरेंट सा क्वेश्चन होगा, अनरिलेटेड बट स्टे ट्यून्ड इन. ये सॉन्ग खत्म होगा तो देन फिर मैं आपको अनाउंस करूंगी गिव अवे के बारे में.

ट्विंकल खन्ना, सैफ अली खान, फरदीन खान, सोनाली बेंद्रे, ये सब एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा रहे. फिल्म का नाम लव के लिए कुछ भी करेगा, ये उस फिल्म का टाइटल ट्रैक. इस फिल्म के बाद ट्विंकल खन्ना फिल्मों में नजर नहीं आई. शी गॉट मैरिड एंड देन ऑफ कोर्स शी टुक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री. कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आई गेस इट्स अ प्रिविलेज, कितनी यंग एज में रिटायर हो जाओ. बट ऑफ कोर्स शी डिडंट रियली रिटायर, शी हैड अदर एंडेवर्स दैट केप्ट हर बिजी. फिल्मों से उन्होंने जो है अलविदा कह दिया था, फिल्मों को अलविदा कह दिया था, यानी कि उसमें काम नहीं किया फिल्मों में. ये फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा ऑल्सो सेलिब्रेटेड देयर ऑल्सो कम्प्लीटेड इट्स 25 ईयर्स इन द इंडस्ट्री. गॉट रिलीज्ड एट द एंड ऑफ दिस मंथ जून, सो अबाउट 25 ईयर्स हो चुके हैं इस फिल्म को भी. डिडन्ट डू टू वेल एट द बॉक्स ऑफिस दैट टाइम, बट ये सॉन्ग पॉपुलर हुआ था. अच्छा, अभी मैं आपसे गिव अवे के बारे में आपको बता दूं, एंड देन आई एम गोना आस्क यू द क्वेश्चन. सो स्टे ट्यून्ड इन. स्टूडियो का फोन नंबर 972-235-5555. सो डू कॉल मी विद द राइट आंसर, एंड जो है मैं आपके कॉल ऑन एयर लूंगी. सो प्लीज स्टार्ट ऑफ विद टेलिंग योर नेम एंड टेलिंग मी दैट यू आर कॉलिंग इन फॉर द giveaway. Giveaway is from FPK, yani ki Fun Pizza Kitchen. If you are craving something cheesy with a desi twist, then definitely head to Fun Pizza Kitchen, where flavor meets fire. Here is your chance to win a $10 gift card from FPK Fun Pizza Kitchen by answering a simple question. Question main aapko puchungi, but let me just tell you a little bit more about the pizzas that they have. For all the veggie lovers, they have achari paneer pizza, which is packed with the tangy achar punch and soft paneer melting in a spicy magic. And if you are a meat lover, the tandoori chicken pizza is purely smoky perfection, straight from the tandoor to your taste buds. So vegetarian as well as non-vegetarian options अच्छे हैं. मैंने पर्सनली खाया हुआ है फन पिज़्ज़ा किचन का, जो ये बनाते हैं पिज़्ज़ाज, एंड दे आर क्वाइट डिलिशियस. माउथ वाटरिंग इनके मेन्यू, इनके डिशेज हैं. ऑफकोर्स दे आर अ पिज़्ज़ा स्टोर, तो पिज़्ज़ाज जो हैं इनके, ये एटलीस्ट ये दोनों जो हैं, अचारी पनीर पिज़्ज़ा एज वेल एज द तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा, दोनों ही बहुत यमी एंड डिलिशियस हैं. सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देर इज अ स्लाइस दैट इज वेटिंग फॉर यू एट द फन पिज़्ज़ा किचन. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज funpizzakitchen.com. क्वेश्चन मेरा आपसे अब ये है गिव अवे, जहाँ पर आप $10 का गिफ्ट कार्ड जीत सकते हैं. आपको मुझे बताना है, आई एम गोना गिव यू टू पेयर्स ऑफ एक्टर्स. आपको मुझे बताना है कि वो दोनों कौन कौन सी फिल्मों में नज़र आए थे. रणबीर कपूर एंड फारूक शेख की कौन सी फिल्म थी जिसमें वो इकट्ठे नज़र आए थे, माधवन एंड परीक्षित सानी. सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू पेयर्स, रणबीर कपूर एंड फारूक शेख कौन सी फिल्म में नज़र आए थे, एंड माधवन एंड परीक्षित सानी कौन सी फिल्म में नज़र आए थे. सो जस्ट टेल मी द नेम्स ऑफ दोज टू फिल्म्स, एंड इफ यू गिव मी द राइट आंसर यू विल विन अ $10 गिफ्ट कार्ड. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. यू हैव टू टेल मी विच मूवी हैड रणबीर कपूर एंड फारूक शेख इन इट, एंड विच मूवी हैड माधवन एंड परीक्षित सानी इन इट.

0: झूठा कहीं का,
1: झूठा कहीं का। हरे रामा हरे कृष्णा,
0: 420 आवारा
1: दिल ही तो है।
2: Good morning, you're live on air.
3: Yeah, hi. So the answer to the first question, well,
2: पहले तो मुझे आप अपना नाम बता दीजिए, and you're calling in for the giveaway. That's okay, no problem.
3: Yes, please. My name is Shweta.
2: Shweta, okay. ठीक है. All right, so I had asked the names of two films. आप मुझे उन दोनों फिल्मों के नाम बता दीजिए, and which film had which pair together.
3: Okay, so first is Ranbir Kapoor and Farooq Sheikh. That is that song, that Kabira Manja. I can't remember the name. I was thinking Zindagi Na Milegi Dobara, but that's not right.
2: कोई नहीं, आप मुझे फिर से कॉल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. जी जी जी, कॉल मी बैक. ओके, गुड मॉर्निंग, यू आर लाइव ऑन एयर. आप मुझे अपना नाम बताइए, एंड आर यू कॉल, या गो हेड, सो यू आर कॉलिंग इन टू फॉर द गिव अवे.
4: करेक्ट, या
2: ओके. सो पहले आप
4: अवेलेबल?
2: यस ऑफ कोर्स, यू आर कॉलिंग फॉर द गिव अवे. तो आप अपना नाम बता दीजिए.
4: या माय नेम इज शशि, शशि बाला.
2: ओके, नाइस, ठीक है जी. तो बताइए दोनों फिल्मों के नाम बताइए, एंड टेल मी द पेयरिंग, द एक्टर्स टुगेदर.
4: यस यस, या परीक्षित सानी एंड आर माधवन इन थ्री इडियट्स.
2: जी, एंड व्हाट वाज द रोल दैट दे हैड, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम?
4: फादर एंड सन.
2: अमेजिंग जी, थ्री इडियट्स में वो इकट्ठे थे. एंड व्हाट अबाउट द अदर पेयर, व्हिच इज?
4: ये जवानी है दीवानी.
2: हाँ जी, और उसमें कौन से दो एक्टर्स थे फादर एंड सन?
4: रणबीर कपूर एंड फारूक सिंह.
2: जी जी जी, थैंक यू सो मच. एंड योर नेम इज शशि, राइट? यू सर
4: शशि बाला गुप्ता.
2: ओ माय गॉड, अच्छा, बहुत अच्छा नाम है. ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. रणबीर कपूर एंड फारूक शेख प्लेड फादर एंड सन इन ये जवानी है दीवानी, एंड माधवन एंड परीक्षित सानी प्लेड फादर एंड सन इन थ्री इडियट्स. सो यस, यू डिड गिव द राइट आंसर. और आपने ये दोनों फिल्में देखी हुई हैं? Have you watched these?
4: Bilkul.
2: Yeah, obviously. Ji, bahut achi film hai. So I'm going to take you off here. Just stay here with me, and I will take your details and let you know how you can claim your prize. Theek hai? So bas yahi rahiye aap.
4: Ji. Thank you.
2: Yeah.

0: चंदन झूला चंदन कंगन।
1: गुड मॉर्निंग, यूर लाइव ऑन एयर। यूर लाइव ऑन एयर, डिड यू वांट टू से समथिंग? क्योंकि कॉलर बहुत देर से कॉल कर रहे थे, आई थॉट आई विल टेक देम ऑन एयर, बट चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस सॉन्ग। शशि बाला इज द विनर फॉर टुडेज गिव अवे एंड कंग्रेचुलेशंस शशि बाला।

बंधन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।

0: भूल गए?
1: जानी मेरा नाम,
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम
0: बंडलबान।
1: लड़के मिलन गीत गाता चल,
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम,
0: बेशरम

0: प्यार किए जा।
1: आर माधवन बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, कुछ गिनी चुनी फिल्में, वेल आई वुडन्ट से गिनी चुनी, उनका करियर वैसे काफ़ी लंबा है, बहुत सालों से वो नज़र आते आ रहे हैं इंडस्ट्री में। वो जो फिल्म्स करते हैं बहुत सिलेक्टिव होती हैं, बहुत चूज़ करते हैं अच्छी तरह स्क्रिप्ट, एंड उन्होंने एक फिल्म जिसमें बहुत अच्छा काम किया था, डेफिनेटली सभी ने बहुत अच्छा काम किया था, उस फिल्म का नाम 3 Idiots, सुपरहिट फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें वन ऑफ द इडियट्स वॉज आर माधवन, और उस में जो उनके फादर का रोल प्ले किया था वो परीक्षित साहनी साहब ने, बलराज साहनी के बेटे। व्हाट अ वंडरफुल एक्टर, व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर ऑन स्क्रीन, इट इज़ इन हिज जीन्स ऑब्वियसली, क्योंकि उनके फादर इतने कमाल के एक्टर थे। परीक्षित साहनी प्लेड द रोल ऑफ आर माधवन्स फादर इन द फिल्म कॉल्ड 3 Idiots। तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था एंड दिस वॉज वन ऑफ द आंसर्स। द अदर पेयरिंग दैट आई हैड गिवन वॉज रणबीर कपूर एंड फारूक शेख। फारूक शेख अपने टाइम पर अच्छे एक्टर थे, अच्छी फिल्मों में काम किया था, ही वॉज मच लव्ड, मच एडमायर्ड फॉर हिज प्रेजेंस ऑन स्क्रीन, फॉर द एक्टिंग स्किल्स। दीप्ति नवल के साथ उनकी फिल्म आई थी, और मैं उसका नाम भूल रही हूँ, आई थिंक साथ साथ कुछ ऐसी फिल्म था नाम फिल्म का, बहुत अच्छी फिल्म थी एंड दीप्ति नवल, आई यूज़ टू रियली लाइक हर। सो उसमें वो नज़र आए थे, रेखा जी के साथ नज़र आए थे, बहुत वेरीड काम किया फारूक शेख ने, एंड ऑफ कोर्स व्हेन ही वाज यंग ही वाज सच अ वंडरफुल वर्सेटाइल एक्टर। उस उन्होंने रणबीर कपूर के फादर का रोल प्ले किया था एंड उस फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी। बहुत ही इमोशनल फादर सन डायनामिक था, बहुत हार्ट वार्मिंग उनकी जो है एक्टिंग थी, अच्छा रोल था, थोड़ा रोल था, एंड ही डाइज इन द फिल्म। देन रणबीर कपूर को यही रिग्रेट होता है कि वो उनके फ्यूनरल पर नहीं जा सकते, सो इट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड रिलेशनशिप दैट दे शो इन द फिल्म कॉल्ड ये जवानी है दीवानी। सो ये मेरा क्वेश्चन था एंड ये दो मैंने पेयरिंग्स दिए थे, हमारी शशि बाला जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और शी वन द गिव अवे फॉर टुडे विच वॉज द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। ब्रेक पर जाने वाले हैं, ये थोड़ा सा सॉन्ग सुन लेते हैं हमारे लिसनर जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की है, एंड आई प्रॉमिस आई विल प्ले इट आफ्टर वी कम बैक, एंड हम लोग एक और सुपरहिट फिल्म की बात करेंगे ब्रेक के बाद, जो कि 25 साल हो गए उस फिल्म को भी इंडस्ट्री में, गदर एक प्रेम कथा की मैं बात कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिल प्ले दिस सॉन्ग, आई विल रिज्यूम इट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। Tony, this is for you.

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
6: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
5: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय
11: कर। अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
15: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
14: Visionary Eye. See clearly. Live

Welcome back. Thank you so much for your phone calls. Thank you so much for your lovely songs. And thank you so much for participating whenever I ask a question. तो आप सब बढ़ चढ़ कर कॉल्स करते हैं. पार्टिसिपेशन आपकी बहुत ही 100 on 100 रहती है. अगर आप कोई मेडिकल प्रैक्टिस ऐसी ढूंढ रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स भी बहुत फिनोमिनल हों, अपने एक्सपर्ट जो उनका जो विजडम है वो शेयर करते हों और आपको अच्छी सलाह देते हों, प्लस उस मेडिकल प्रैक्टिस की जो है कस्टमर सर्विस भी बहुत कमाल की हो, सो देन लुक नो फर्दर देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, मतलब आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन या हेल्थ केयर के साथ, और जो है आपको जितनी भी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो पूरी अच्छी तरह क्लैरिफाई करेंगे. बिकॉज प्लेनी ऑफ टाइम, 30 मिनट्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू बी विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर अ फैमिली. एंड फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज. They also have some employment opportunities. They are hiring primary care doctors, endocrinologists, a pediatrician, and a psychiatrist for full-time and part-time appointment opportunities. If you are passionate about patient care, you can send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com or you can text them at 217-454. ये नंबर ठीक नहीं है. 214-666-6259 इज़ द नंबर टू गेट इन टच विद द पैशन प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी. 214-666-6259 passionhealthphysicians.com. Alright, I had mentioned कि हम एक और फिल्म के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. I'll touch upon that film as well because keeping in mind the time that I have here now, it's about 23 minutes, 25 minutes से कम है अब time हमारे पास. तो अब जो मैं मूवी के बारे में बात करूंगी, दैट इज़ गदर, एक प्रेम कथा जो आई थी June 15th, 2001 वाले दिन ही रिलीज़ हुई थी अलॉन्ग विद लगान. बोथ ऑफ देम ब्लॉकबस्टर फिल्म्स. दे हैड डिफरेंट जॉनर्स ऑफ द स्टोरीज, सो देर वर नॉट अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन. हाउ एवर दे वर स्टिल अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन. इतनी हैवी ड्यूटी मेगा मूवीज़ रिलीज़ हुई थी दोनों सेम डे पर, और जो है ऑडियंस ने जितना गदर एक प्रेम कथा को प्यार दिया था उतना ही लगान को भी प्यार दिया था. सो दीज टू फिल्म्स वर मास्टरपीसेस इन देयर ओन सेंस. गदर एक प्रेम कथा की तो सीक्वल भी बना था अभी रिसेंटली, एंड ऑनेस्टली इन माई ओपिनियन एंड इन वॉट आईव ऑब्जर्व सो फार, जो सीक्वल्स होते हैं ना वो इतना कभी नहीं चलते. लगान का कोई सीक्वल अभी तक नहीं आया एंड आई रियली होप कि वो बनाए भी ना, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम एक मास्टर पीस बन जाता है उसकी जो रेपूटेशन आपके माइंड में बन जाती है, स्पेशली फिल्म्स लाइक लगान, DDLJ, हम आपके हैं कौन, इनका सीक्वल ना ही बने तो अच्छा है. गदर एक प्रेम कथा, दे केम विद द सीक्वल विद वंडरफुल ग्रेट इंटेंशंस. नए स्टार्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ये सकीना एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कैरेक्टर दैट सनी देओल प्लेड, बट ये वाली जो ओरिजिनल फिल्म थी बहुत ही अच्छी थी. एंड इसमें उत्तम सिंह ने म्यूज़िक को कंपोज किया था, लिरिक्स लिखे थे आनंद पक्षी साहब ने. ये वाला जो सॉन्ग है उदित नारायण की आवाज़ में, क्या गाना था.

आपको ये तारा सिंह, सनी देओल ने तारा सिंह का रोल प्ले किया था, और फिर आपको वो याद होगा हैंडपम्प वाला सीन, जो इतना कमाल का, इतना मैस अपीलिंग सीन था. और वो जो है ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था. इसको कहते हैं कि ओवर द टॉप, जो है ऑन द स्पॉट इन्होंने इस सीन के बारे में सोचा, इसको इनेक्ट किया, और हैंडपम्प बिकेम दिस सीन बिकेम सच अ पॉपुलर सीन, आइकॉनिक सीन बन गया. और इतना एक्शन एलिमेंट था उस सीन में कि इट डेफिनेटली स्टिल रिमेन्स एज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सीन्स इन द हिंदी मूवी सिनेमा. सो वो हैंडपम्प वाला जो सीन है वो इसी फिल्म का है, तारा सिंह पर फिल्माया गया है. एंड सनी देओल, जो कि ऑलरेडी इनके इतने सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स रहे हैं आमिर, नॉट आमिर, अमरीश पुरी के साथ, ये वाला भी जो है, इस समय भी अमरीश पुरी थे. एंड ये हैंडपम्प वाला सीन बहुत ही यादगार सीन बन गया. सो गदर एक प्रेम कथा. सकीना एंड तारा सिंह थे इस फिल्म की ये दो कैरेक्टर्स. और फिल्म को क्या शेप मिली, क्या रूपरेखा मिली, ये फिल्म ने बहुत कमाल किया. ब्लॉकबस्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर, नॉट जस्ट इंडिया में बट आल्सो ग्लोबली. बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड इस फिल्म ने जो है सेट किए.

अनिल शर्मा जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, कैन यू इमेजिन अगर इस फिल्म में गोविंदा एंड काजोल होते इन द लीडिंग रोल्स, तो आई डोंट नो कैसे लगते। अमीषा पटेल एंड सनी देओल ने जो काम कर दिया वो बहुत ही अच्छा काम बना, एंड आई डोंट थिंक कोई और एक्टर्स होते तो इतना सूट होते इस फिल्म की कैस्टिंग में। एक और सॉन्ग लाइंड अप है इसी फिल्म का जो बहुत अच्छा सॉन्ग है, पहले जा रहा था लता जी को बट उनका कैलेंडर इतना फिल्ड अप था, इट फाइनली एंडेड अप विद अलका याग्निक।

टाइम तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, 3 घंटे भी अब तो कम लगते हैं यहाँ पर। इतने अच्छे सॉन्ग्स प्ले होते हैं, सब आप ही की रिक्वेस्ट होती है, आपसे बातें होती हैं, इतना कुछ शेयर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड अ पार्ट ऑफ आवर फन एशिया रेडियो। थैंक यू सो मच, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू दैट वी आर हियर। सो आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अब जो मैं सॉन्ग प्ले करूँगी, दिस वुड बी द लास्ट सॉन्ग ऑफ माई शो फॉर टुडे। दिस इज़ आर जे ग्रुप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। 3 घंटे का शो आता है तो बस आप सुनते रहें ये शो भी, मेरा वाला शो एंड हमारे बाकी और जो शोज आते हैं फनीशिया पर। सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल वीक, एन्जॉय योर समर, योर मानसून सीजन कह सकते हैं क्योंकि बारिशें हो रही हैं बहुत। एंड अभी जो है मधुलिका आएंगी आपके लिए, एंटरटेनमेंट अच्छा अच्छा करती हैं वो भी, बहुत अच्छे सॉन्ग्स लेकर आती हैं। सो फॉर राइट नाउ दिस इज़ आर जे ग्रुप साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर. मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत. वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे जस्ट लाइक द वेदर, जस्ट चिल. वेल, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. अ बिग शाउट आउट टू एक रूप फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 एएम. लवली रेट्रो सॉन्ग्स दैट शी गेट्स फॉर अस एंड दैट रियली मेक्स माय मॉर्निंग रियली स्पेशल. कमिंग बैक टू जस्ट चिल, संडे होता है हमारा फन फैक्ट सेगमेंट. कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स करती हूँ आपके साथ शेयर एंड सुनते हैं कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने. सो स्टूडियो का नंबर एक बार फिर 972-235-5555.

टेकन फ्रॉम द मूवी हम तुम। एंड सच में कुछ गाने होते हैं जिनको सुनते ही आपके गम जो है वो सारे चक दे हो जाते हैं, राइट। सो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि हर गाने से कोई मेमोरी, कोई याद, कोई खास बात जुड़ी होती है अक्सर। कि अगर खुश हैं तो आपको कोई गाना गुनगुनाने का मन करता है, अगर आप दुखी हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर गाना याद आता है, या फिर कोई गाने से कोई सुनहरी यादें जुड़ी होती हैं। सो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है 21 जून को, तो हम जानना चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपके कौन से फेवरेट गाने हैं, राइट। सो आप हमें बताएं कि इन डिफरेंट कैटेगरीज विच सॉन्ग आर योर फेवरेट। एंड फनीशिया वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट वर्ल्ड म्यूजिक डे विद यू ऑल, एज यू नो देर इज दिस गूगल पेज ऑन आर सोशल मीडिया। तो आपको करना ये है दैट द लिसनर हु सॉन्ग चॉइसेस मेक इट इन टू आर फाइनल प्ले लिस्ट द मोस्ट विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस। यू नीड टू विजिट funasia.net और यू कैन फॉलो आर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स। आप ये गूगल फॉर्म भरें एंड सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ म्यूजिक विद फनेशिया 104.9 FM। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स।

Well, that was taken from Kapoor and Sons, right? अब आपको मैं बताऊं कि जो मिस्टेक्स होती है ना, दे आर वे मोर इंटरेस्टिंग देन दे गेट क्रेडिट फॉर. क्योंकि कई बार ये जो मिस्टेक्स है ना, दे लीड अप टू सम इन्वेंशंस. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं दैट ये जो पोस्टिट नोट्स हैं, वर बेसिकली अ फेल्ड सुपर ग्लू. अ साइंटिस्ट एट 3M tried to make a super strong adhesive but accidentally created a weak reusable one, and it was initially seen as useless until it became sticky notes. तो कई बार वो जो गलती से मिस्टेक होती है ना, वो भी फायदेमंद हो जाती है.

Well, that was a गलती से mistake taken from जग्गा जासूस. और ऐसी ही एक और मिस्टेक से हमें चॉकलेट चिप कुकी भी मिली थी. जी हाँ, चॉकलेट चिप कुकीज जो हैं वर अ बेकिंग एक्सीडेंट. बेसिकली अ बेकर एक्सपेक्टेड चॉकलेट टू फुली मेल्ट इन टू डो, बट द चंक्स स्टेड इंटैक्ट एंड इंस्टेड ऑफ रूइंड कुकीज वी एक्चुअली गॉट आर चॉकलेट चिप कुकीज. तो हो जाता है कभी कभी, गलती से मिस्टेक से भी फायदा, लेकिन कभी कभी मिस्टेक से नुकसान भी हो जाता है. भले ही वो आपकी मिस्टेक ना हो, बट यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि ये नाम भूल जाए. ये नाम ज़रूर याद रखें, एंड दैट इज़ अटर्नी ओमर ख्वाजा. As he'll fight your case, get you compensation, deal with all the stress of insurance companies and get you the right compensation and

आप उन्हें पे नहीं करते टिल यू विन योर केस. सो फ्री कंसल्टेशन के लिए आप अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और यू कैन विजिट अटर्नी उमर.com. दैट्स अटर्नी उमर.com.

taken from the movie Barfi, that was Aashiyan. Acha, aise hi kuch fun facts around eyes bhi batana chahungi, you know, because हम सबके पास एक ब्लाइंड स्पॉट होता है विच वी नेवर नोटिस. जी हाँ, ईच आई हैज़ अ स्पॉट विद नो लाइट रिसेप्टर्स वेयर द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स. एंड इसका मतलब ये हुआ दैट देयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर विजन दैट इज टेक्निकली मिसिंग एंड योर ब्रेन जस्ट चीट्स एंड फिल्स इट इन यूजिंग सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन. यू नो, जो आपकी आंखें हैं, इट डजंट सेंड अ फुल पिक्चर टू योर ब्रेन, दे सेंड मेसी सिग्नल्स एंड योर ब्रेन फिल्स इन गैप्स यूजिंग अजम्पशंस. और शायद इसीलिए ऑप्टिकल इल्यूजन्स वर्क करते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज लिटरली मेकिंग मिस्टेक्स इन रियल टाइम. वेल, आप मिस्टेक ना करें, और अगर चाहते हैं कि आपका जो ये ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेस का ये सिलसिला है वो हट जाए, या कुछ आपको शायद पता ना हो, तो आपको मैं लेसिक यानी कि विजनरी आई केयर के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज हियर समथिंग दैट यू माइट नॉट नो एंड दैट्स लेसिक. It's just one of several vision correction options available today. Dr. Shehzad Batliwala hai, ek fellowship trained eye surgeon and founder of Visionary Eye Care in Plano. Inki approach kafi simple si hai, that educate first so that aap khud apne liye best decision le paye with confidence. So to learn more about options and see if you are a candidate, aap unhe call kare. The number is 214-972-2020 or visit LASIK. Plano.com and साथ ही साथ remember to mention Fun Asia 2020. जी हाँ, Fun Asia 2020 अगर आप mention करेंगे then you will receive a free consultation. तो आप ये ज़रूर याद रखें, डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला, जी हाँ, Visionary Eye Care इनका है प्लेनो में, एंड ही विल एजुकेट यू, ही विल टेल यू व्हाट ऑल ऑप्शंस यू रियली हैव एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन व्हाट यू रियली वांट टू डू. एंड द नंबर फॉर देम वंस अगेन इज 214-972-2020. रिमेंबर टू मेंशन फन एशिया 2020 एंड रिसीव अ फ्री कंसल्टेशन. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग, वेल, दैट्स टेकन फ्रॉम जाने तू या जाने ना. रिमेंबर, दिस इज मधुलिका, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहां करते हैं हम, as the name suggests, just chill.

0: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
0: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1. Mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2. Masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3. Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
0: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
5: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
0: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Phoenicia 104.9 FM.

दैट वॉज मैं परवाना. वेल मैं परवाना नहीं, मैं तो हूँ मधुलिका और लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. करती हूँ संडे को आपके साथ कुछ मज़ेदार फन फैक्ट्स शेयर और सुनते हैं कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने. तो आपको बताऊँ कि फ्रेंड्स मेक टाइम फील फास्टर. वो ऐसे कि जब आप मज़े कर रहे होते हैं ना, व्हेन यू आर हैविंग फन सोशली, योर ब्रेन जो है पेज लेस अटेंशन टू टाइम ट्रैकिंग. और इसीलिए शायद 2 घंटे का हैंग आउट भी फील्स लाइक अ 20 मिनट, स्पेशली इफ़ यू आर फुल्ली इंगेज. ये भी माना जाता है दैट इफ़ यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, योर ब्रेन रिलीजेज डोपामिन, यू नो, रिवॉर्ड केमिकल, या फिर ऑक्सीटोसिन विच इज़ द बॉन्डिंग केमिकल. और इसीलिए शायद सिंपल थिंग्स जैसे कि बातें करना, हंसना हंसाना कैन फील ऑडली सेटिस्फाइंग. और अगर आप सोच रहे हैं कि दोस्तों के साथ कहाँ जाएँ, कहाँ ये हंसी मजाक हो, कहाँ ये मटर गस्ती हो, तो आपको मैं Page 3 ईटरी के बारे में बताना चाहूँगी. दे आर ऑन, यू नो, दे आर एट Hub 121. Page 3 ईटरी में आपको इंडियन स्ट्रीट फूड भी मिलेगा, कबाब्स, चाट्स, फ्यूजन बाइट्स, मॉकटेल्स, यू नो, एंड आप ब्रंच पे जाएं, लंच पे जाएं, डेट्स पर जा सकते हैं, डिनर पे ले जा सकते हैं. इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, फॉर डेट्स एंड फॉर फ्लेवर चेजर्स. सो विजिट Page 3 ईटरी.com फॉर मोर डिटेल्स एंड डेफिनेटली इन्जॉय द मटर गस्ती विद योर फ्रेंड्स.

वेल, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो फिर अगला जो गाने का ट्रांसलेशन मैं देने वाली हूँ वो भी समझ के बताएं कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ, और आप जीत जाएंगे एक गिव अवे जो कि आ रहा है चंडीगढ़ बाइट्स, जो कि एलन में है उनकी तरफ से। जी हाँ, हेयर्स योर चांस टू विन कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन। साथ ही साथ जब आप वहाँ जाएं तो एंजॉय द स्पेशल थाली जो मंडे थ्रू फ्राइडे एक्साइटिंग न्यू डिशेस के साथ रोटेट होती है डेली फॉर लंच ऑनली। चंडीगढ़ बाइट्स जो है इज लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन। साथ ही साथ आप विजिट करें chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स। अच्छा, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ इस गिव अवे के लिए एक सवाल। सवाल ये है कि मैं एक गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555 एंड द ट्रांसलेशन गोज समथिंग लाइक दिस। सीइंग द कलर ऑफ वाटर, टीयर्स कीप फॉलिंग फ्रॉम माई आईज। सो आई रिपीट, सीइंग द कलर ऑफ वाटर, टीयर्स कीप फॉलिंग फ्रॉम माई आईज। बताइए मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ।

0: जी हाँ, मैंने पूछा था आपसे चंडीगढ़ बाइट्स एलन की तरफ से जो गिव अवे है उसके लिए सवाल कि मैं एक गाने का आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ एंड यू हैव टू टेल मी और गेस विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. द ट्रांसलेशन गोज लाइक सीइंग द कलर ऑफ वाटर टीयर्स कीप फॉलिंग फ्रॉम माई आईज एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hello, good
0: हाय,
1: morning.
0: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: I'm doing good. How about you?
0: I am doing great, sir. What's your name?
1: My name is Puneet Malode.
0: All right, Puneet, तो बताइए कौन से गाने की बात हो रही है?
1: अभी आप पानी दा रंग देख के
0: Awesome.
1: अखियां जो अंजूर उड़ गए,
0: क्या
1: ये गाने
0: बात
1: के
0: है,
1: बाद
0: क्या
1: मैं
0: बात
1: ट्रांसलेशन कर
0: है.
1: रहे थे.
0: Awesome. Very well played, Puneet. Congratulations. चंडीगढ़ बाई टैलेंट की तरफ से जीत लिया आपने
1: थैंक
0: ये
1: यू.
0: गिव अवे. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स. सो जस्ट होल्ड ऑन.
1: या थैंक यू. ओके.

taken from the movie Vicky Donor, that was पानी दार रंग. एंड यस, होता है ना कभी कभी कि आप जो चाहें वो हो ही जाता है. अब जैसे कि विशाल और शेखर अपना सुपर हिट टूर लेकर आ रहे हैं डैलस से. जी हाँ, आ रहे हैं वो संडे 12 जुलाई को एट कर्टिस कर्बल सेंटर गार्लैंड. एंड आप अपने टिकट्स खरीद डालें एट cashpatelproductions.com, क्योंकि आपकी जो प्लेलिस्ट है इज अबाउट टू कम अलाइव. जी हाँ, विशाल एंड शेखर आर कमिंग ऑल द वे हियर टू डैलस विद अ सुपर हिट टूर. एंड डू नॉट मिस दैट. इट्स ऑन July 12th. इट्स अ संडे. इट्स गोना बी एट कर्टिस कल्वेल सेंटर इन गार्लैंड. एंड यू कैन बाय योर टिकट्स एट cashpatelproductions.com.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
7: Filmon ka maza, action, drama aur romance mein. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
14: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
15: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
14: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
16: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.

listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, स्टूडियो का नंबर रखें याद 972-235-5555, क्योंकि सुन रहे हैं कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने, साथ ही साथ कर रही हूँ आपके साथ कुछ मजेदार, फन और इंटरेस्टिंग बातें शेयर.

0: भोला भाला सिंपल,
1: जी हाँ, दिल हमेशा सिंपल ही होता है एंड भोला भाला ही होता है. एंड आपको पता है दैट योर वॉइस कैन चेंज व्हेन यू लाइक समवन. जी हाँ, स्टडीज शो दैट पीपल ऑफन रेज पिच स्लाइटली और सॉफ्ट इन देयर टोन अराउंड समवन दे आर अट्रैक्टेड टू इवन विदाउट रियलाइजिंग इट.

0: Well, that song was for Pallabhi and Jayanta. Well, this is a dedication coming from Sandeep and Kirti. Well, if you have any dedications, any celebrations, any shout-outs, do give me a call. The number is 972-235-5555. Main hoon Madhulika, lekar aayi hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Main dungi aapka saath dopahar ke 12 baje tak. Studio ka number rakhein yaad, 972-235-5555.
1: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond, and bridal collections designed for every celebration, milestone, and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations, and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands ki life badle unki divine guidance se. Now it's your turn.
5: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
4: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह एच ई बी में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही एच ई बी के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट एच ई बी पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. एजीबी, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
7: आई एम सो स्ट्रेस्ड. क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
8: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस.
7: क्या मतलब?
8: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
7: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
10: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
11: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, as the name suggest, just chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. संडे होता है हमारा फन फैक्ट्स, और कोई भी डेडिकेशन सेलिब्रेशन मेरे और आपकी पसंद के गानों का दिन. सो यस, आधा घंटा और हूँ आपके साथ. एंड अब है द नेक्स्ट सॉन्ग इज डेडिकेटेड फॉर यू ऑन योर स्पेशल डे. वी ऑल जस्ट वांट यू टू नो दैट हाउ मच यू आर अप्रिशिएटेड एंड चेरिश्ड. मे योर लाइफ बी फिल्ड विद एंडलेस हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस एंड ऑल द लव योर हार्ट कैन होल्ड. यू डिजर्व नथिंग बट द बेस्ट टुडे एंड ऑलवेज. स्टे ब्लेस्ड, स्टे अमेजिंग एंड कीप शाइनिंग द वे यू डू. Happy, happy birthday. This is coming from Amay Anvi, of course, me, Madhulika, and the entire, you know, Fun Asia team, wishing you a very happy birthday.

Well, that was a slow motion अंग्रेजा taken from भाग मिल्खा भाग. अगला गाना प्ले करूं उसके पहले कुछ और फन फैक्ट्स, मे बी दिस टाइम रिलेटेड टू आईज. आपको पता है योर आईज नेवर फुली गो ऑफ वेन यू स्लीप. जी हाँ, इवन वेन यू आर अस्लीप पार्ट्स ऑफ योर विजुअल सिस्टम स्टेज एक्टिव, राइट, विच इज वाई यू कैन स्टिल रिएक्ट टू लाइट एंड समटाइम्स वेक अप इफ इट्स ब्राइट. और मजे की बात ये दैट यू ब्लिंक अबाउट 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट यूजुअली. दैट एड्स अप टू अबाउट 20,000 प्लस ब्लिंक्स पर डे. ईच ब्लिंक इज लाइक अ टाइनी रिफ्रेश फॉर योर आईज. सो ब्लिंक करना अच्छी बात होती है. अगर आपकी आदत है कम ब्लिंक करने की तो कोशिश करें आदत में डालें कि ज़्यादा ब्लिंक करें. और एक मजे की बात दैट यू नो eyes heal faster than almost any other part of your body. Small scratches on the cornea can heal in about 24 to 48 hours.

That was a title track, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। चलिए अगला गाना प्ले करूँ अब, क्योंकि उस गाने में ये वर्ड आता है तो सोचा कि जिन्हें ना पता हो उन्हें बताती चलूँ। दैट सेनोरिटा, सेनोरिटा जो है इज अ स्पैनिश वर्ड फॉर एन अनमैरिड वुमन, लाइक सिमिलर टू मिस इन इंग्लिश, एंड इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सिन्योरा। सिन्योरा मीन्स मिसेज और अ मैरिड वुमन, सो सेनोरिटा इज द You know, is derived from that word meaning little lady or young lady, and that's senorita for you all.

Well, that was a taken from the movie Zindagi Na Milegi Dobara, and that was a Senorita for you all. Well, you know, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye, but aap kahin jaiyega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio, as yahan hamare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Neelam. Main milungi agle pure hafte till the next Sunday every day. Ji haan, bas timing thodi different hogi. Kal milungi main aapko subah 10 se leke dopahar ke 12:30 baje tak. And then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday main dungi aapka saath dopahar 2:30 se shaam 5 baje tak. And then again Saturday and Sunday will be back with Just Chill. सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक. तो स्टूडियो का रखें नंबर याद, 972-235-5555. यू नो, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. वेल, तब तक के लिए, कल तक के लिए, क्योंकि कल तो मैं आपसे मिल ही रही हूँ सुबह 10 बजे. वेल, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahun.
5: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
4: Kaise?
5: Page 3 eatery?
4: No, not another restaurant again.
5: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं
6: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं ही तो.
15: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना, बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
12: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

दिस इज़ KZMP 104.9 FM फनीश रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में मैं नीलम प्रस्तुत करती हूँ 2 बजे तक हर रविवार की दोपहर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा होता है आप सबकी खिदमत में, लेकिन कोशिश होती है कि हर लम्हे हर पल आपके लिए जो भी गाने लाओ वो कुछ फिल्मों की चकाचौंध से दूर हो, उन गलियों में जहाँ पे कुछ नई आवाज़ें हो, अगर आवाज़ें पुरानी भी है लेकिन वहीं आप सिमिलर प्लेलिस्ट नहीं सुनेंगे मेरे साथ। कुछ अलग सांस, कुछ अलग आवाज़, कुछ अलग बातें होती है हमारे साथ इस कार्यक्रम में हर रविवार की दोपहर। और कुछ नॉन फिल्मी गाने होते हैं जहाँ पर कुछ प्राइवेट एल्बम्स की बातें होती है, कभी कभार वेब सीरीज़ के गाने होते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स की प्रस्तुति, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, पाकिस्तानी ड्रामा, तो बस होता है यही हमारे साथ, यही सफर म्यूजिकल आपका और हमारा एवरी संडे। सैटरडे से होता है 12 से 3 के बीच में, जहां 2 बजे तक बॉलीवुड बेस्ड गाने प्रस्तुत करती हूं एंड 2 to 3 PM इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी। तो चलिए आज के दिन जैसे कि मैंने कहा हमारे पास होता है सिर्फ 1 घंटा, तो इस हर पल हर लम्हे को बना देते हैं म्यूजिकल ऑन 104.9 FM।

ओमकार फिल्म से सुना आपने बहुत ही खूबसूरत गीत, विशाल भारद्वाज के संगीत में सजा हुआ, विशाल भारद्वाज और उनके साथ ही श्रेया घोषाल की आवाज़। और कभी कभार ये बातें होती है हमारे साथ कि हम जो गाना भूल जाते हैं, किसी जब बात छिड़ती है तो ये बातें या गाने याद आ जाते हैं। सो फॉर इट जस्ट सो हैपन यस्टरडे आई वॉज डूइंग अ सेगमेंट ऑन इम्तियाज अली ऑन माई सैटरडे सेगमेंट, और उसमें बात निकली थी विशाल भारद्वाज की, बिकॉज आई वॉज आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्म में कहानी भी लिखी एंड ही ऑल्सो डायरेक्टर, और उससे बातों बातों में बात निकली कि ही सिंग्स एज वेल। तो मुझे ये गाना याद आया था तब, तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके लिए मैं सुनवा देती हूँ। विशाल भारद्वाज इज़ अ ग्रेट सिंगर एज वेल, लेकिन वो सिर्फ अपने गानों को, अपनी आवाज़ को अपनी फिल्मों तक ही सीमित रखते हैं। इट इज़ वेरी रेयर दैट ही हैज़ कंपोज फॉर एनी अदर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। सिमिलरली वो कभी भी किसी और फिल्म के लिए, किसी और एल्बम्स के लिए नहीं गाते, ही जस्ट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। तो एक अच्छी बात है, राइट? ही डजंट से कि भाई मेरी अच्छी आवाज़ है तो मुझे लीजिए, मुझे और गाने मिलने चाहिए, मुझे और कॉन्सर्ट्स मिलनी चाहिए, बिकॉज मे बी बिकॉज इज सो वर्सेटाइल। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट सिंगिंग, ही इज़ ऑल्सो अ कम्पोजर, ही इज़ ऑल्सो अ राइटर एंड ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर। ऐसी कुछ बातों के साथ ज़्यादातर गैर फिल्मी गाने रहेंगे हमारे साथ आज। कुछ फिल्मी गाने तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे गाने जो बड़े पर्दे के मोहताज नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी गा लिया, YouTube पे अपलोड कर दिया, कहीं Instagram पे अपलोड कर दिया, कुछ एल्बम्स बहुत हिट हो जाते हैं, कुछ एल्बम्स सुनने के बाद लगता है कि यार क्या बात है। तो बस ऐसे कुछ गज़ल्स, ऐसे कुछ सूफी गाने, कुछ प्राइवेट एल्बम्स के गाने आप ही के लिए ऑन 104.9 FM।

संगीत की देवी और गजल के बादशाह दोनों साथ में आ जाए तो क्या हो, यही बात कुछ हुई थी 1991। दोनों ने साथ में आकर एक गजल की एल्बम की प्रस्तुति की थी जिसका नाम रखा गया सजदा। सजदा यानी कि इबादत, और ये इबादत से कम नहीं है हमारे जैसे म्यूज़िक लवर्स के लिए। इसमें 16 गज़ल्स थी और सारी गज़ल्स कहीं ना कहीं लता जी की आवाज़ या जगजीत सिंह साहब की, दोनों की ड्यूएट थी। मोस्ट ऑफ देम आई बिलीव इट इज़ ड्यूएट। और 16 जैसे 16 फर्स्ट टाइम एवर दिस हैपेंड इन द हिस्ट्री की 1991 में ये बात हुई थी जब लता जी ने जगजीत सिंह साहब के साथ काम किया इन द प्राइवेट एल्बम की ये गज़ल सजदा नाम रखा गया था। और ये इतनी पॉपुलर बन गई थी ये उनकी जो एल्बम्स की कलेक्शन थी, सारी गाने उसके सारी गज़ल्स आर वंडरफुल वंडरफुली डन, लेकिन एक या दो है बहुत बहुत पॉपुलर चार्ट बस्टर्स बन गए थे जिसमें से एक ही आपने गज़ल सुनी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, तू मुझको मैं तुझको क्या समझाऊँ दिल दीवाना तेरा भी है मेरा भी। ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो आप पे मेरे यानी कि नीलम के साथ कोशिश होती है दोस्तों कि इस सेगमेंट के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान एक से दो के बीच में आपके लिए जो भी गाने प्रस्तुत करूँ वो कुछ ऐसे गाने हो जो आप फिल्मी गाने अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ अलग लाने की एक छोटी सी कोशिश मेरी। और इस कोशिश को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी पसंद को पसंद करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऑन 104.9 FM। संपूर्ण एक बैंड का नाम है, संपूर्ण यानी कि कंप्लीट, जी हाँ, इट्स अ कंप्लीट बैंड में हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट विथ म्यूजिशियंस एंड वोकलिस्ट।

0: संपूर्ण बैंड की प्रस्तुति मुझे रंग देना 104.9 FM फनीशा रेडियो मेरा और आपका साथ होगा 2 बजे तक। जी बिल्कुल कहीं मत जाएगा, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन कुछ और भी वेब सीरीज की बातें होगी, ड्रामास की बातें होगी, कुछ आपकी पसंद होगी, कुछ हमारी पसंद होगी, लेकिन ये सारी पसंद होगी गैर फिल्मी। जी हाँ, 104.9 FM फनीशा रे।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
8: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
9: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
10: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
11: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
12: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
13: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
12: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, the SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।

0: कर्नाटक के सुपर हिट्स इज कमिंग योर वे
1: विशाल एंड शेखर
2: हियर वी गो
0: दैट्स राइट विशाल एंड शेखर लाइव गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग फिल्ड विद सॉन्ग्स यू डांस टू सेलिब्रेटेड विद एंड फॉलन इन लव लिसनिंग टू संडे जुलाई 12th एट द करिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड टिकट्स ऑन सेल नाउ कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम द सुपर हिट टूर विद विशाल एंड शेखर
3: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत
4: एंड वेलकम बैक दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम पनीश रेडियो पे मैं हूं नीलम आपके साथ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और कुछ दिनों में जब 80 डिग्रीज प्लस हो जाती है 100 ऑलमोस्ट 90 प्लस एंड व्हेन इट रेन्स इट लगता है अरे वाह क्या बात है जस्ट रिलीफ राइट बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ी सी भी बारिश की बौछारें हो जाए जैसे कि हमारी धरती को चाहिए व्हेन इट गेट्स टू हॉट हमें भी चाहिए हमारे मन को हमारे दिल को कि कुछ कुछ बौछारें हो जाए बस हम भी ऐसे संगीत की बौछारें आपके लिए एवरी वीकेंड लाते हैं 12 से 3 के बीच में ऑन सैटरडेज संडेज 2 बजे तक जी हाँ संडे सिर्फ होता है हमारा और आपका साथ 2 बजे तक लेकिन खैर कोई बात नहीं जितने भी पल है लम्हे हैं बिल्कुल म्यूजिकल बनाने की कोशिश रहेगी आपकी हमारे साथ होगी ये मुलाकातें वीकेंड्स में कनेक्टिंग अमेरिका कभी कभार ये होता है कि हमारे जब बिजनेस होती है कोई हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो इतने बड़े बढ़ जाते हैं कि लगता है कि यार उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना तो चलिए मैं आपको एक ऐसा नाम दे देती हूँ कि ताकि आपके जो बिजनेस एक्सपेंसेस है उसको आप पावरफुल इनकम स्ट्रीम में बदल सकते हैं कैसे वेल एक नंबर मैं आपको देती हूँ जिनका नाम है जेम्स यू कैन कॉल हिम टुडे 321-888-7345 और यू कैन विजिट connectingamericafinancials.com वंस अगेन दैट नंबर इज 321-888-7345 और connectingamericafinancials.com ताकि आपको पता चले कि आप कैसे आपके बिजनेस एक्सपेंसेस को इनकम में बदल सकते हैं और प्राइमरी केयर अक्सर हम ढूंढते रहते हैं नो मैटर व्हाट राइट कोई भी सीजन हो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार बुखार है यार ये है वो है कब कुछ भी याद आ जाए तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए लगता है कि कौन लेगी अपॉइंटमेंट क्योंकि अपॉइंटमेंट कितनी भी जल्दी ना हो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आपको मिलने वाले नहीं डॉक्टर के साथ राइट लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा नाम देती हूँ जो आपके लिए 30 मिनट पूरी 30 मिनट सेकेंड डेडिकेट जस्ट फॉर योर अपॉइंटमेंट एंड दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जहाँ पर आप जाते हैं फॉर एंटायर 30 मिनट्स तो आज ही आपके लिए परिवार के लिए यू कैन गो टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर यू कैन एक्चुअली कॉल देम 214-666-6259 और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com एंड दैट इज आपके नए डॉक्टर के लिए वंस अगेन एज आई सेड द नंबर इज 214-666-6259 जहाँ पर आप जा सकते हैं एंड यू नो एज आई सेड समटाइम्स यू स्पेंड द होल डे जस्ट फ्रॉम द ऑफिस के या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है एंड गोइंग बैक एंड फोर्थ 2 घंटे की कभी कभार पूरी अपॉइंटमेंट हो जाती है लेकिन जब डॉक्टर के साथ काम होती है हमारी बातें वो होती है सिर्फ 5 मिनट की सर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा आपके साथ एंड द नंबर इज 214-666-6259 और मैं हूँ नीलम आपके साथ रहती हूँ हर शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून कुछ गैर फिल्मी बातें गैर फिल्मी गाने आप ही की खिदमत में रहेंगे यहाँ पे आप ही के साथ टिल 2 PM 104.9 FM 1 Asia Radio

मैं यहाँ लिखूँ तू आ जाए, क्या बात है। 104.9 FM फनेश रेडियो, बस बिल्कुल आप भी आ जाइए। और लेकिन हमारे जाने का जब वक्त होगा तब भी आप रह सकते हैं फनेश रेडियो, क्योंकि हम है सातों दिन 2400 घंटे, एंड दिस इज़ योर ओन मनीषा 104.9 FM। कुछ वेब सीरीज़ की और कुछ ऐसे टीवी के शोज़ की भी हम भाई बातें करते हैं, कुछ रिकमेंडेशन आप हमें देते हैं, कुछ जानकारी मैं आपको देती हूँ, और ये बस प्यार यूं ही हमारा फलता रहता है, चलता रहता है। सो वेल, मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन राख एक ऐसी वेब सीरीज़ है जहाँ पर आप देखेंगे 70s में बनी हुई एक किडनैपिंग की जो बात है, हत्याकांड से प्रेरित एक डार्क, इट्स अ वेरी वेरी डार्क क्राइम थ्रिलर, जिसमें इफ़ यू रिमेम्बर 70s में जो बात हुई थी, टू वन सिस्टर एंड वन ब्रदर, दोनों की किडनैपिंग हुई थी, और दोनों में उसके बाद जो भी पूरी कंट्री में हंगामा मच गया था, एंड इट वाज अ वेरी वेरी ब्रूटल मर्डर ऑफ दोज किड्स। तो ये बात जो है इस सीरीज़ में दिखाई गई है, और उसमें सोनाली बेंद्रे, सबसे अच्छी बात यह है कि सोनाली बेंद्रे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई रिमेंबर देर वॉज अ सीरीज न्यूज़ ब्रेक समथिंग, बिकॉज आई नो शी वॉज अ जर्नलिस्ट, उस रोल में उनका रोल जो था, किरदार जो था, इट वॉज अबाउट अ टी वी शो की वो जर्नलिस्ट थी। तो उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स और 3 ईयर्स शी वुड बी हियर इन दिस सीरीज, जिसका नाम है राख, और उनके साथ होगी अली फजल। सो अली फजल और सोनाली बेंद्रे दोनों ने इसमें काम किया है, एंड जितने भी क्रिटिक्स हैं उनका कहना यह है कि इट्स आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अ वेरी वेल मेड क्राइम थ्रिलर। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि देखिए, देखा जाए तो क्राइम थ्रिलर ही थ्रिलर है, बाहर जहाँ पर भी हमारी नज़र होती है, आजू बाजू जो भी वेब सीरीज देख लें, वन जस्ट वन टॉपिक राइट, इट्स अबाउट क्राइम विद इधर वे, दे ट्राई टू प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट वे, कुछ मसाले डालकर, कहीं कहीं आपको कुछ लव स्टोरीज डालकर, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ सेम स्टोरी, सेम कंसेप्ट अबाउट क्राइम एंड थ्रिलर। लेकिन ये जो है, कहा जाता है कि इट्स इंस्पायर्ड ऑफ द ट्रू इवेंट्स, और उसकी डायरेक्शन कुछ अलग है। तो वेल, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, जिसका नाम है राख। और मेरा नाम तो आप जानते ही है, लेकिन नहीं जानते कोई बात नहीं, सिर्फ हमारे गाने सुनते रहिए और हमारे फनेशिया रेडियो को सुनते रहिए, क्योंकि ये है आपका और हमारा फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम।

104.9 FM Fun Asia Radio. आप बिग बॉस देखते थे? मैं देखते थे नहीं कहना चाहिए, मुझे देखते हैं, क्योंकि आई डोंट नो उसकी कितनी लंबी अभी सीजन्स कौन सी आई है, लेटेस्ट क्या चल रहा है उसमें. बट खैर, सो बिग बॉस के बहुत सारे फैंस हैं, राइट? इफ आई डोंट वॉच इट डजेंट मीन कि आप नहीं देख रहे होगे, आपको अच्छी लगती होगी, डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए इफ़ यू लाइक इट. तो ऐसी सिमिलर कंसेप्ट के साथ एकता कपूर ने कुछ सालों पहले एक रियलिटी शो की प्रस्तुति की थी जिसका नाम था लॉकअप. लॉकअप में भी वही कंसेप्ट था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, कंटेस्टेंट है, वो सारे एक जगह पर रहेंगे एंड दे आर लॉक्ड इन, एंड वो कहीं पर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, एंड उनकी जो भी हर रोज़ दिन बना में जो भी बातें होती है वो रिकॉर्ड होती है, झगड़े, उनके प्यार की बातें वगैरह वगैरह. तो अब उसकी सीज़न 2 आ रही है, लॉकअप सीज़न 2. वंस अगेन एकता कपूर की है ये रियलिटी शो, जिसमें जो होस्ट होंगे, क्योंकि जैसे कि बिग बॉस में होस्ट होते, राइट, सलमान खान वगैरह वगैरह जो होस्ट रहे थे, इसी तरह इसमें जो होस्ट है इस सीज़न में, दैट इज़ फराह खान एंड रितेश देशमुख. तो अगर आपने देखी है ये सीरीज़ लॉकअप पहली बार उसकी सीज़न 1, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अब उसकी सीज़न 2 आ रही है, जहाँ पर आप शायद उनके साथ नए कुछ कंटेस्टेंट होंगे, कुछ नए झगड़े होंगे, नई बातें, नई गॉसिप्स इन दैट शो. लेकिन हमारे यहाँ गॉसिप्स और झगड़े नहीं होते, हमारे यहाँ सिर्फ अच्छा संगीत होता है. 104.9 FM.

0: ਕਹਿੰਦੀ
1: ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
2: अच्छा आप बॉबी देओल के बहुत बड़े फ़ैन हैं या बहुत बड़े फ़ैन नहीं भी है लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं उनकी एक्टिंग एंड यू नो समटाइम्स किसी की जो तकदीर होती है वो बहुत देर से चमकती है तो डू यू गाइज अग्री क्योंकि देखिए जब उन्होंने फिल्मों में अपनी एंट्री की थी मैं बॉबी देओल की बात कर रही हूँ इन 90s में बरसात उनकी पहली फिल्म थी अलॉन्ग विद ट्विंकल खन्ना फिल्म ठीक ठाक चली थी उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्म्स की कुछ चलती थी कुछ नहीं चलती थी बड़े भैया का साथ था पापा का साथ था तो फिल्म्स मिल भी जाती थी एंड कहीं कहीं उनकी जो एक्टिंग नज़र आ भी जाती थी बट स्टिल आई वुड नॉट से कि वो बहुत बड़े सफल कलाकार थे इन द बॉलीवुड राइट अप अंटिल 5 years ago या 2 years ago लेकिन बाद में उन्होंने जब रुख किया OTT प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वेब सीरीज़ में काम करने की अपनी उन्होंने शुरुआत कर दी थी कुछ सीरीज़ उनकी आई एंड उनमें जो पहली सीरीज़ थी आश्रम सीजन 1 About 3 years ago या 4 years ago 2021 में आई थी वो सीरीज़ इतनी चली लोगों को इतनी अच्छी लगी थी उनकी एक्टिंग हालांकि उनका आउट एंड आउट नेगेटिव शेड कम्प्लीटली नेगेटिव शेड फिर भी बहुत अच्छी लगी थी उनकी जो एक्टिंग थी उनका किरदार था लोगों को पसंद आया था आफ्टर दैट ही स्टार्टेड गेटिंग सम बॉलीवुड फिल्म जिसमें उनका किरदार अगेन नेगेटिव ही रहता था लेकिन ही डिड सो वेल जैसे कि एनिमल में आपने देखा होगा वैसे कितनी भी फिल्म्स में वो दिखे आपने नेगेटिव शेड्स उन्होंने किए सो आई थिंक उनको समझ में ये बात आ गई कि पॉजिटिव या नेगेटिव अगर एक्टिंग करनी है फिल्मों में रहना नहीं है तो कहीं पे भी और टिकना है तो कुछ भी जो भी रोल मिले उसमें बहुत शाइन करना होगा एंड ही शाइन सो वेल इन आश्रम तो अब आश्रम सीजन उसकी नेक्स्ट सीजन की शुरुआत तो होने वाली है इन जस्ट फ्यू मंथ आई बिलीव क्योंकि उसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है एंड यू विल अगेन सी बॉबी देओल इन दिस आश्रम सीरीज और एज आई सेड कि यू नो उनके मे बी ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया था डायरेक्टर्स उन्हें इतने अच्छे नहीं मिले होंगे फिल्म इतनी अच्छी नहीं मिली लेकिन लेटली हैज़ बिन डूइंग अ वंडरफुल जॉब जैसे कि आश्रम में ऐसे बहुत सारी बातों के साथ मैं हूँ नीलम आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड

कुछ धुने होती है जो कहानियों के लिए बनती है और कुछ धुने खुद एक कहानी बन जाती है ना। बस ऐसी ही धुने, ऐसे ही संगीत की बातें, साज और आवाज की बातें मैं नीलम लाती हूँ आपके लिए। फिल्मी शोर नहीं होते हमारे जो गाने होते हैं, वहाँ मैं कोशिश होती मेरी कि शोर कम और सुर ज़्यादा, चाहे सैटरडे की सेगमेंट की बात हो या संडे की सेगमेंट की बात हो। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी के कॉल्स के लिए, आप सभी के प्यार के लिए, क्योंकि आपको भी मेरी तरह ही संगीत से प्यार है। और जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, संगीत में फास्ट सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे शोर हो वो गाने आप हमारे साथ, बिल्कुल कोशिश होती है कि ज़्यादा सुरीले बन जाए। कुछ जज्बातों की बात, कुछ संगीत की बात, साज और आवाज़ की बात सुनते रहिए मेरे साथ एवरी वीकेंड, सैटरडेज 12 से 3 के बीच में एंड संडेज 12 से 2 के बीच में। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। अगर आप वर्ल्ड म्यूजिक डे में हिस्सा लेना चाहें, आप कैसे, तो वेल यू कैन लॉग ऑन टू fanasia.net, जहां पर जाकर आप जिस भी कैटेगरी के गाने आपको बहुत पसंद है, यू कैन एंटर एंड यू मे बी द लकी विनर। तो चलिए, ऐसी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, संगीत की बातें होती रहेगी, प्यार की बातें, जज्बात की बातें, धुन की बातें, ये सारी बातें आप ही के साथ मैं नीलम प्रस्तुत करती रहूंगी ऑन फनेशिया रेडियो। अब मुलाकात होगी हमारी अगले शनिवार, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एंजॉयिंग फनेशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
3: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
3: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
3: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
3: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
4: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
5: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu, dhuan dhuan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
8: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: जिस बात का डर था वही हुआ. Lymphosarcoma of the intestine.
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना. एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. Your health, your language, your comfort.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे. ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ सिक्स वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स? आई एम डॉक्टर शहजाद बातलीवाला. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
8: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
7: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
8: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
9: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
8: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
10: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
12: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par. TheJagoTimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
14: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
15: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
14: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
16: हाय, दिस इज रणवीर शौरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
17: Subscribe and press the bell icon on the YouTube app.
18: हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते,
19: मगर जी नहीं सकते।

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से। पेश किया जाता है ये शो आपके लिए हर सैटरडे और संडे को। सैटरडे को साथ रहता है 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, एंड ऑन संडेज आई एम हियर बिटवीन 3 and 6 PM। उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। टुडे इज द 14th of June 2025, अ स्प्लेंडेड संडे आफ्टरनून, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग इट विथ यू। आज के इस शो में हम आगाज कर रहे हैं अपने सेगमेंट का विद ऑसम 80s। जी हाँ, आज के इस सेगमेंट में आपको हम सिलेक्टेड 80s के गाने सुनवाएंगे, और साथ साथ आपके साथ कुछ गपशप भी होती रहेगी। हमारी भाषा में, हमारी जुबान में मुहावरे बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और रोज़मर्रा की जिंदगी में अक्सर स्पेशली मॉम्स टेंड टू यूज देम अ लॉट। तो मैंने सोचा आज क्यों ना गानों के साथ साथ मुहावरों पर भी बात की जाए। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग इन इंग्लिश। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो ये कि आप इंग्लिश से उसे हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करें, और फिर हमें बताइए कि उसका मतलब क्या है। Alright, so I'm going to start with the first one, or phone number deti chalu, just in case you don't have it. 972-235-5555 hamare studio ka number hai, where you can call and tell me ke main kis muhavre ki baat kar rahi hoon aur uska matlab kya hai. And of course, we're not doing any giveaways right now, lekin it's just for fun. So do call us and participate in this special segment. Once again, 972-235-5555. Jo pehla muhavra jo main aapko English mein bataungi, you have to translate and then figure out what it means. Making your teeth sour. Let's see if you know what that means. Meanwhile, we'll continue Awesome 80s with this next track from the film Qurbani.

क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी की आवाज में सुन रहे थे आप 1980 की सुपरहिट फिल्म कुर्बानी से लिया गया ये गाना। ऑसम 80s में तमाम सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। वैसे हमने आगाज किया था 1981 की फिल्म कुदरत के गाने से, जो कि राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया था और आवाज थी किशोर कुमार की। वेल, आज हमने सोचा ऑसम 80s के हिट गानों के साथ साथ कुछ हम मुहावरे यानी के प्रोवर्ब्स आपके साथ शेयर करें। सो पहला जो मैंने आपसे मुहावरा पूछा इंग्लिश में, एंड एमिन वाज प्रीटी स्मार्ट, शी इज ओनली 8 years old एंड शी न्यू हाउ टू ट्रांसलेट इट। सो मैंने कहा था मेकिंग द टीथ सावर, सो उसने कहा कि दांत खट्टे करना, तो ये जवाब बिल्कुल सही है, बट दैट वाज पार्शियल। हमने पूछा था कि दांत खट्टे करने का मतलब होता क्या है। वेल, बिलीव इट और नॉट, नाउ दिस वाज वन ऑफ द वंस दैट आई डिडंट नो मायसेल्फ ईदर, सो मैंने एक्सप्लोर किया और सर्च किया एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड, कि दांत खट्टे करने का मतलब है किसी को हराना, बहुत अच्छे से हराना, उनको डिफीट कर देना, कंप्लीटली क्रश कर देना। यानी कि आपकी किसी के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई लड़ाई है, उस लड़ाई में भरपूर तरीके से अगर आप जीत जाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि दांत खट्टे करना। एंड आई एक्चुअली ऑलवेज थॉट इट वॉज समथिंग टू डू विद जेलसी, बट एक्चुअली इट डजेंट। एनीवे, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग माय म्यूजिक सिलेक्शन फॉर ऑसम 80s टुडे। आई डू वांट टू डू अ क्विक शाउट आउट फॉर तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट। गालन में है ये फ्लेवर डेस्टिनेशन आपके लिए, मज़ेदार खाने, हर तरह के नॉर्थ इंडियन खाने जो आपको पसंद है, बट द गुड थिंग इज इट्स विद अ होम स्टाइल फ्लेवर, यानी के रेस्टोरेंट की फील मिलेगी लेकिन खाने का जायका बिल्कुल घर के सा, बिकॉज दे मेक एवरीथिंग फ्रेश एंड देव गॉट एवरीथिंग फ्रॉम तंदूरी कबाब्स टू करीज एंड एवरीथिंग यू वांट। सो वहाँ ज़रूर जाइए, ट्राई कीजिए उनका खाना और हमें बताइएगा कि आपको तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट कैसा लगा। दे आर लोकेटेड इन गालिन। आइए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1982 की सुपर डुपर हिट फिल्म डिस्को डांसर के इस गाने की तरफ। एंड व्हेन आई कम बैक आई एम गोइंग टू शेयर अनदर मुहावरा विद यू, बी रेडी।

सुपर डुपर हिट फिल्म डिस्को डांसर के इस गाने की तरफ. एंड व्हेन आई कम बैक आई एम गोइंग टू शेयर अनदर मुहावरा विद यू. बी रेडी.

Taken from the film Disco Dancer, ये गाना मिथुन चक्रवर्ती पर पिक्चराइज किया गया था. उनकी पहली और सुपर हिट फिल्म थी, 1982 में रिलीज हुई थी. 19 minutes past 3, you are listening to Awesome 80s. I'm your host Amreen Hasnath and I'll be entertaining you till 6 PM. और आज गानों के साथ साथ हम कुछ मुहावरे भी शेयर कर रहे हैं. And the next one which I often use and I'm going to go ahead again share it in English, आपने पहले तो इसे ट्रांसलेट करना है और फिर बताना है कि इसका मतलब क्या है. 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर. Putting on four moons. Let's see if you can figure this one out. And we'll continue Awesome 80s with this next track from the film Heroes.

लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में ये मशहूर जमाना गीत सुन रहे थे एज पार्ट ऑफ द फिल्म हीरो, जो कि 1983 की सुपर हिट फिल्मों में से एक थी। आज ऑसम 80s के इस सेगमेंट में ना सिर्फ हम आपको 80s के सुपर हिट गाने सुनवा रहे हैं, बल्कि साथ साथ आपकी प्रोवर्ब नॉलेज भी हम टेस्ट कर रहे हैं, मुहावरों की कर रहे हैं बात। नाउ हबीब साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे इस आखिरी सवाल का। एंड कीशा, आई वांटेड टू टेक यू ऑन एयर बट इट सीम्स द कॉल गॉट डिसकनेक्टेड। सो मैंने पूछा था कि पुटिंग ऑन फोर मून्स का क्या मतलब है, एंड यस इट इज चार चांद लगाना, विच अगर इंग्लिश में इसका हम प्रोवर्ब यूज करें तो आइसिंग ऑन द केक, विच मीन्स एडिंग टू समथिंग टू मेक इट इवन बेटर। आइए अब चलते हैं 1984 की हिट फिल्म के इस सुपर हिट गाने की तरफ। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज अमरीन हसनात।

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
4: Wait, itna sab aur price?
1: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
7: Jis baat ka dar tha, wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
10: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
11: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विथ यू टिल 6 PM. इट इज 34 मिनट्स पास्ट 3 ऑन दिस 14th ऑफ जून 2026. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. वेल बिफोर वी कंटिन्यू ऑसम 80s का सेगमेंट, जिसमें हम आपको 80s की हिट फिल्मों के सुपर डुपर हिट गाने सुनवा रहे हैं, लेट मी गो अहेड एंड टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अच्छा, आमतौर पे आपको डॉक्टर के पास कितना टाइम लगता है? मतलब एज इन डॉक्टर आपके लिए कितना टाइम निकालता है? 5 मिनट, शायद 10 मिनट? वेल गेस व्हाट, एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हर अपॉइंटमेंट एट लीस्ट 30 मिनट्स के लिए होती है, बिकॉज यू नो आपकी सिचुएशन को एज अ पेशेंट समझने के लिए टाइम तो लगता है, राइट? योर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स वाई पैशन हेल्थ के लिए आप सिर्फ एक पेशेंट ही नहीं, फैमिली है, और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और सिर्फ यही नहीं, पैशन हेल्थ केयर इज एक्चुअली ग्रोइंग. दे आर हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, फुल टाइम या पार्ट टाइम, जो भी आपके पास आपकी नीड है. एंड इफ यू पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर, यू नीड टू सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com या फिर टेक्स्ट करें 214-666-6259. You can also visit the website, which is passionhealthphysicians.com. All right. So, janab, ye to tha ek message hamare sponsors ki taraf se. Now, let's continue with our mahavron ki khel, right? Jisme hum kya kar rahe the? I'm giving you these proverbs in English. आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, और फिर हमें ये भी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है. Now, the next one is throwing sand in the eyes. ये क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? Throwing sand in the eyes. All right. So if you know, you can call 972-235-5555. Meanwhile, we're going to continue Awesome 80s with the 86 ki superhit film Jambaz ke is gaane ke saath. Enjoy.

0: साधना सरगम और मनहर उदास की आवाज में सुन रहे थे आप जांबाज फिल्म का ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जो कि बॉस फिल्म में भी रीमेक किया गया। ये गाना श्रीदेवी और फिरोज खान पर पिक्चराइज किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिल से। आज का सेगमेंट है ऑसम 80s का, साथ साथ हम आपकी मुहावरों की नॉलेज भी टेस्ट कर रहे हैं। एंड आई डू वॉन्ट टू थैंक संगीता एंड माधवी जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। बट देन आई हैड अनदर कॉलर हु वांटेड टू शेयर दैट विद अस। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन द एयर। आपका नाम?
1: अमीना।
0: अमीना जी, एंड आई टुक यू ऑन एयर बिकॉज यू वर द फर्स्ट कॉलर टू गिव अस अ करेक्ट आंसर। सो अब आप बताइए हमें कि जो मैंने कहा था एज इन थ्रोइंग सैंड इन द आईज, इसका क्या मतलब है और जो मतलब हिंदी में से क्या कहते हैं और मतलब क्या है मुहावरे का?
1: Throwing sand in the eyes का हिंदी में मतलब है आंखों में धूल झोंकना,
0: बिल्कुल
1: और
0: सही।
1: उसका मीनिंग है कि किसी को धोखा देना या डिसीव करना, डिसीविंग
0: बिल्कुल
1: समवन।
0: सही। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट योर कॉल अमीना, ऑल द बेस्ट। '80s में एक से बढ़कर एक फिल्म रिलीज हुई थी और जहां 87 की बात आती है तो इट वॉज हार्ड फॉर मी टू डिसाइड कि कौन सी फिल्म का गाना प्ले करूं। आई पिक्ड दिस वन जो कि विनोद खन्ना और अनीता राज पर पिक्चराइज किया गया है।

दिल में हो तुम एस जानकी की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना, इसका भी रीमेक बना। एंड यू नो इट्स अमेजिंग इन अ वे, कभी कभी गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों नए गाने नहीं बना पा रहे हैं, पुराने गानों को क्यों कॉपी कर रहे हैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि जब ये गाने रीमेक इनके बनाए जाते हैं देन द न्यू जनरेशन इज एबल टू हियर दीज सॉन्ग्स, अदरवाइज दे मे हैव नेवर हर्ड अबाउट देम, सो इन दैट वे आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। 46 मिनट्स पास्ट 3, आज आप लोगों की मुहावरों की नॉलेज को टेस्ट कर रही हूं मैं, सो हियर्स अनदर वन, सी इफ यू कैन फिगर दिस वन आउट। वॉशिंग वन्स हैंड्स एंड गेटिंग बिहाइंड समवन, वॉशिंग वन्स हैंड्स एंड गेटिंग बिहाइंड समवन। तो ऑसम 80s को कंटिन्यू करते हैं, बल्कि 87 की एक और फिल्म थी मिस्टर इंडिया, जी हाँ आप कैसे भूल सकते हैं, तो उसी फिल्म का जो एक बहुत ही पॉपुलर हिट गाना था, आइए वो सुनते हैं। व्हाइल आई टेक योर कॉल्स एक्सप्लेनिंग द मुहावरा टू मी, 9722355555।

0: All right, you know, I'm actually really enjoying the fact that आप सभी लोगों को मुहावरों के बारे में इतना पता है, because आजकल तो लोग पूरी हिंदी या पूरी उर्दू भी नहीं बोलते, कहाँ मुहावरे इस्तेमाल करना या उन्हें समझना. So I had asked this one, which I thought could be a little tricky. Washing one's hands and getting behind someone. इसका क्या मतलब होगा? Let's find out. Phanisha Radio, आप on air हैं. आपका नाम?
1: कविता.
0: हेलो कविता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ. तो बताइए क्या मतलब होता है इसका, वॉशिंग वन्स हैंड्स एंड गेटिंग बिहाइंड समवन?
1: इसका मतलब है हाथ धो के पीछे पड़ जाना.
0: ओके, और हाथ धोए बगैर किसी के पीछे नहीं पड़ सकते?
1: हाथ धो के नहीं पड़ सकते क्योंकि उसकी जान नहीं छोड़नी है, उसके पीछे पड़ जाना है बस.
0: हाँ, एंड यू नो इफ यू लुक एट इट, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यानी कि लेट्स से अगर किसी को जॉब चाहिए तो, और उसे लगता है कि किसी के रेफरेंस से जॉब मिल जाएगी, तो वो पीछे पड़ा हुआ है बिकॉज ही इज मोटिवेटेड टू गेट द जॉब. लाइकवाइज अगर आपको किसी को जबरदस्ती किसी से कुछ मनवाना है तो भी आप उसके पीछे पड़े रहे, विच कैन बी नेगेटिव, राइट?
1: या और उसको जलाने के लिए बार बार उसी के हाथ पीछे पड़ जाना, इसका ये भी मतलब हो सकता है.
0: ट्रू. वेल थैंक यू सो मच कविता फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, एंड आई होप यू हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द इवनिंग. All right.
1: Welcome.
0: Thank you. All right, ladies and gentlemen, continue करते हैं awesome 80s को. Thank you, Sohail, for the compliment. I'm so glad आपको हमारे selection पसंद आ रही है. Well, मैं आप लोगों को पहचानती हूँ इसीलिए तो.
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
3: मैं कर रही थी किसी का इंतजार.
2: कौन है वो?
3: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार.

0: 1988 का सुपर डुपर चार्ट बस्टर ब्लॉक बस्टर गाना तेजाब फिल्म का ये गाना माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था और आवाज थी अलका याग्निक की। रातों रात ना सिर्फ माधुरी बल्कि अलका याग्निक भी सुपर स्टार बन गई इस गाने के साथ। इट्स 53 मिनट्स पास्ट 3 और अब की बार जो मुहावरा मैं आपसे पूछने लगी हूँ उसके साथ मैंने सोचा क्योंकि ज़रा मुश्किल है क्यों ना उसके साथ एक इनाम को अटैच कर दिया जाए और इस बार इनाम है फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से $10 गिफ्ट कार्ड यानी कि आप अपनी मर्जी का पिज़्ज़ा ले सकते हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो शायद आपको अचारी पनीर पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगेगा और अगर नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नो मैटर व्हाट यू ट्राई एट फन पिज़्ज़ा किचन यू गोना गेट द बेस्ट देसी पिज़्ज़ा इन टाउन। Alright, so आप रेडी हैं? सबसे पहले तो मैं स्टूडियो का नंबर दे दूं इन केस यू वांट टू कॉल। रिमेंबर देयर इज अ प्राइज अटैच्ड टू दिस क्वेश्चन 972-235-5555। Alright, इस बार हमारा मुहावरा है और मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी तो सबसे पहले तो आपको उसे ट्रांसलेट करना होगा फिर आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा एंड अनलेस यू आर 100% श्योर refrain from calling यानी कि because we don't want to make it easier for the next person। क्या होगा कि आपके वजह से उन्हें clue मिल जाएगा और फिर वो अपनी तरफ से अच्छे से जवाब दे देंगे और जीत जाएंगे तो मत किसी और को जताना खुद जीतना अगर आपको सही जवाब आता है। और दूसरी बात अगर आपने फन पिज़्ज़ा किचन से पहले ये $10 गिफ्ट सर्टिफिकेट विन किया है तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मुझे तो पता नहीं चलेगा लेकिन मैं आपका नाम अगर वहाँ भिजवा भी दूँ तो नाम लिस्ट पर अगर वो देखेंगे एंड इफ इट मैचेज अ प्रीवियस विनर and I'm so sorry you won't qualify so give someone else a chance। All right, so here it is, muhavra hai to grind split mung beans on someone's chest, to grind split mung beans on someone's chest। Kya matlab hai iska, kya kehna cha rahe hain yahan hum? 972-235-5555 studio ka number hai, sahi jawab dijiye aur jeetiye fun pizza kitchen ka $10 gift certificate। Fun Asia Radio, आप on air है, आपका नाम?
1: मेरा नाम प्रेरणा है।
0: प्रेरणा, have you won? एक सेकंड, have you won anything from Fun Pizza Kitchen before?
1: No, this is my first time।
0: Perfect, अब बताइए मैंने इंग्लिश में जो बोला उसकी हिंदी क्या है, पहले तो ये बताइए।
1: उसकी हिंदी है किसी की छाती पे मूंग दलना।
0: हाँ, और इसका मतलब क्या है, आप किसी की छाती पे दाल पकाएंगे?
1: नहीं नहीं, इसका मतलब होता है अच्छे से इतना परेशान कर देना कि वो और कुछ कर ही ना पाए।
0: बिल्कुल सही। वेल प्रेरणा, दैट वाज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर। कांग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर ऑफ द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन। प्लीज स्टे ऑन द लाइन एंड आई विल गेट योर डिटेल्स। मीनवाइल आइए चलते हैं ऑसम 80s के आखिरी गाने की तरफ। दिस वन फ्रॉम 1989, एक्चुअली दिस वन फ्रॉम 1988। आखिरी गाना हम आई गेस ब्रेक के बाद प्ले करेंगे।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
7: ओह हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
8: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
15: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
8: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
16: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
17: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
18: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
19: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
20: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shadi India mein kare?
21: India mein?
20: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
21: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
21: सच में सब संभालेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
22: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
23: Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host, Amreen Hasnat, and I'll be entertaining you till 6 p.m. Party abhi baki hai, mere dost. 5 minutes past four, 14th of June, 2026. It's a lovely Sunday afternoon. The weather's been pretty good. Well, at least filvak barish nahi ho rahi. 81 degrees Fahrenheit is the current temperature here in the McKinney area. Today has been mostly cloudy. Today's high 83, low of 68 degrees Fahrenheit. And I think it rained earlier in the morning. But jab se main jagi hu, tab se to barish nahi hui. The only barish I experienced was in my shower. And that happens every time I get in the shower, it starts raining. मैं छतरी भी नहीं लेके जाती, लेके जानी चाहिए, राइट? ऑलराइट, अब है बारी हमारे सेकंड सेगमेंट की, यानी के बिटवीन 4 and 5 वील डू द सेगमेंट टाइटल्ड शब्द, जिसमें हम एक वर्ड, एक लफ्ज, एक शब्द से रिलेटेड आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, कुछ नए कुछ पुराने. वी स्टार्ट फ्रॉम द ओल्डीज एंड दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड टू डू. आई पिक्ड अ सॉन्ग फ्रॉम द 50s. अब आप गेस करने की कोशिश करें कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज, आज का शब्द क्या है. सी इफ यू कैन गेस सिंपली बाय लिसनिंग टू द फर्स्ट ट्रैक. इफ नॉट, इंतजार कीजिए दूसरे सॉन्ग का, शायद आप गेस कर पाए. इस सेगमेंट में हम ऐसा रिक्वेस्ट नहीं लेते, पर आई अश्योर यू आई हैव अ ग्रेट सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फॉर यू. We start with the oldies and move up by decades. 50s ke baad 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, so on and so forth.

बाबूजी धीरे चलना, अ टाइमलेस क्लासिक फ्रॉम द 50s, टेकन फ्रॉम द फिल्म आर पार. आई होप ये गाना आपको सुनकर मजा आया एंड यू प्रॉब्ली फेल्ट नॉस्टैल्जिक. यूजुअली दोपहर को कहाँ ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं. 9 minutes past 4, शब्द सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं एंड आई एम श्योर ये अगला गाना सुनकर तो आप गेस कर ही लेंगे कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज, आज का शब्द क्या है.

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है। लता जी की आवाज में अनुपमा फिल्म से लिया गया ये गाना हमने आपको सुनवाया, और इस दूसरे गाने को सुन के तो जनाब सभी ने सही गेस कर लिया कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज, आज का शब्द है धीरे, और उसी से रिलेटेड गाने हम आपको सुनवाएंगे। अमिता जी, यास्मीन, लता जी, बिल्कुल सही गेस किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द करेक्ट आंसर। और जो म्यूजिक आज के इस सेगमेंट में हम पेश करेंगे, आपको सुनवाएंगे, आई अश्योर यू कि हर गाना आपको अच्छा लगेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ पुराने गाने नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़े। अब देखिए ना, हमने 50s से शुरुआत की थी, 60s का गाना सुना और अब 70s का सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको ये बताती चलूं दैट फन एजर्स सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे, और सेलिब्रेट करना भी चाहिए क्योंकि म्यूजिक हमारी जिंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यानी कि बात खुशी की हो या गम की हो, कोई ना कोई गाना हमारी उस सिचुएशन से जुड़ा रहता है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू साउथ एशियन फोक्स, हमारी तो इतनी मेलोड्रामेटिक किस्म की लाइफ है और हर मोमेंट के लिए कोई गाना है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज June 1st से लेकर June 15th तक यू फिल आउट आर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज। फिर फनीशा विल सिलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स, ठीक है, और उनमें से वो गाने प्ले किए जाएंगे June 21st को ऑन वर्ल्ड म्यूजिक डे। और हाँ, एवरी फनीशा शो दैट डे विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक जॉनर फीचरिंग द विनिंग सिलेक्शन। और एक्साइटिंग बात यह है कि आप इनाम के हकदार भी हो सकते हैं अगर आपका सेलेक्टेड गाना शामिल किया जाता है हमारे सेगमेंट्स में।

धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। मुकेश साहब और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फ्रॉम द 70s मूवी गोरा और काला। जैसे कि हमने आपको बताया, शब्द सेगमेंट में हम सिर्फ एक जानर के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि अलग अलग स्टाइल के गाने होते हैं, अलग अलग फिल्मों के होते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम यानी कि डेकेड के गाने होते हैं। The only common thing is the word, लव्स, शब्द, जो कि आज क्या है? धीरे, बिल्कुल सही गेस किया हमारे सभी लिसनर्स ने। और हाँ, एक बार फिर मैं उन तमाम लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मुझे वेलकम कर रहे हैं बैक ऑन द एयरवेव्स ऑफ 104.9 FM। आई एम जस्ट एज हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी एंटरटेनिंग यू गाइस अगेन। बस नोट कर लीजिए, हर सैटरडे को 3:30 से 6 बजे तक एंड हर संडे को बिटवीन 3 and 6 PM आपको मैं यही मिलूंगी यानी के फन एशिया रेडियो पर।

विराज बब्बर और रेखा पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म अगर तुम ना होते से लिया गया था, और आवाज तो आपने पहचान ही ली होगी आशा भोसले की। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज अमरीन हसनात। शब्द सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और 80s की ही एक और फिल्म का सुनते हैं गाना।

शब्द सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। 1989 में रिलीज हुई फिल्म के इस ऑल टाइम फेवरेट गाने को सुनते हैं 104.9 FM पर।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: चिकन बनाना
11: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
12: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को.
17: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
16: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.

0: hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग दिस लवली इवनिंग. ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन वेलकमिंग मी बैक ऑन एयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. नाउ इट सीम्स कि मैंने सही डिसीजन लिया लौट कर आने का. इट इज 34 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 14th ऑफ जून 2026. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर संडे इवनिंग विथ मी. Now, many people ask me कि मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी और अब क्या कर रही हूँ. Well, I'm doing a lot of things. And one of those things is awesome events. जी हाँ, you may have heard the ad. I actually now manage my own event coordination company, which I had been doing for a long time in the past as well. लेकिन चूंकि मैं यहाँ फनीशा के साथ बहुत busy रहती थी, मेरे पास उतना वक्त नहीं होता था. But now, I'm able to take more time out for my company and help you with your events. चाहे छोटी सी बर्थडे पार्टी हो या कोई बड़ा वेडिंग इवेंट, वट एवर इट इज दैट यू नीड हेल्प विद, आई कैन डू इट पर्सनली. एंड एज यू ऑल नो, आई स्पेशलाइज इन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स. सो इफ यू नीड समवन टू एमसी योर इवेंट, आई वुड बी मोर देन हैप्पी एंड विल बी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ योर इवेंट. यू कैन कॉल मी हियर एट द स्टूडियो या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. 214-725-7466. That is 214-725-7466. That is me, aapki host, aapki dost, Amreen Hasnat. Aaiye ab shabd segment ko aage badhate hain. Humne 80s ke gaane to sun liye, 50s, 60s, 70s aur 80s ke gaane. Ab chalte hain 90s ki taraf.

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप अजय देवगन और मधु पर फिल्म फूल और कांटे के लिए पिक्चराइज किया गया ये गीत। और इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस, वेल आधे घंटे पहले आगाज किया था हमने इस सेगमेंट का शब्द, जिसमें हमारा आज का वर्ड, आज का लफ्ज है धीरे, और उसी से रिलेटेड गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, नए और पुराने। खैर, यू मिस्ड आउट ऑल द पुराने गाने, क्योंकि 50s, 60s, 70s और 80s के गाने तो हम पिछले सेगमेंट में सुन लिए, और अब हम 90s की तरफ बढ़ गए हैं।

1995 में रिलीज हुई फिल्म बाजी का सुन रहे थे आप ये गाना उदित नारायण की आवाज में। ये गाना आमिर खान और ममता कुलकर्णी पर पिक्चराइज किया गया था। यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट सॉन्ग, वांटेड टू टेल यू अबाउट विशाल एंड शेकर्स लाइव इवेंट। बॉलीवुड फैन है अगर आप तो डेफिनेटली there's gotta be a song that this duo made that you loved, so you need to be part of this super hit tour in Dallas on Sunday, July 12th at the Curtis Culver Center in Garland. Tickets mil jayenge aapko cashpatelproductions.com par, so get them now before it's too late.

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में सुन रहे थे आप हेलो ब्रदर फिल्म से लिया गया ये गाना, जो कि सलमान खान और रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया था समवेयर इन हॉलैंड। अच्छा, आपने नोट किया है बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं उनमें जब वो हीरो को दिखाते हैं, हीरो भले गरीब ही क्यों ना हो लेकिन होती उसके पास कन्वर्टेबल है, एटलीस्ट रियलिटी में होना हो गानों में ज़रूर उसके पास कन्वर्टेबल होती है। मुझे लगा मैं भी किसी हीरोइन से कम नहीं हूँ तो मैंने भी ले ली कन्वर्टेबल, लेकिन ये और बात है कि आई मीन आई हैड सो फार आई थिंक आई हैड 3 कन्वर्टेबल्स एंड आई हैव हार्डली एवर यूज इट, स्पेशली इन टेक्सास हीट। कभी ऐसा तो मौसम आता नहीं है, चलो मौसम आ भी जाता है तो फिर मुझे ये फिक्र होती है कि कहीं मेरे बाल ना ख़राब हो जाए, कहीं मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए। सो आई डोंट नो इफ कन्वर्टेबल वॉज द राइट चॉइस फॉर समवन लाइक मी।

बैक टू बैक दो सलमान खान के गाने हो गए, आपको लगेगा कि शायद मैं सलमान खान फैन हूँ, ऐसा नहीं है. जस्ट सो हैपेंड कि दोनों गानों में शब्द था धीरे, सो वी हैड टू प्ले इट. इनफैक्ट मेरा तीसरा गाना भी सलमान खान की फिल्म का ही था, तो मैंने सोचा काफी हो गए सल्लू भाई के गाने, अब आगे चलते हैं किसी अलग टाइप के गाने की तरफ. पर इस गाने में भी शब्द धीरे आपको सुनाई देगा.

सोनू कक्कर की आवाज में दम फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट शब्द, जिसमें आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लफ्ज था धीरे।

शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म पहेली से लिया गया था और आवाज थी सोनू निगम की। अब रैप अप करते हैं शब्द का सेगमेंट इस आखिरी गाने के साथ। दिस वन्स टेकन फ्रॉम द फिल्म लव यात्री, आवाज आतिफ असलम।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond, and bridal collections designed for every celebration, milestone, and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations, and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted. Style defined.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
16: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

लग दी लाहौर दिया, मैं तो इस्लामाबाद से हूँ, बट इट्स ओके. लव दिस सॉन्ग बाय गुरु रंधावा, टेकन फ्रॉम द फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ड्राइव थ्रू रिक्वेस्ट आवर, यानी कि इस एक घंटे में हम सिर्फ और सिर्फ आपके मनपसंद मन चाहे गाने प्ले करेंगे. बट यस, देयर इज ऑलवेज अ कैच. ऑफ कोर्स यू नो आई हैव रिस्ट्रिक्शंस, आई हैव टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर माय शो. सो इस सेगमेंट में हम 2020 के बाद के गाने प्ले करेंगे. दैट मींस यू हैव गॉट 7 years ऑफ मूवी म्यूजिक टू चूज फ्रॉम, एंड कॉल इन विथ योर रिक्वेस्ट बिकॉज वी वांट टू प्ले न्यू एंड अपबीट स्टफ, यू नो, स्टफ दैट इज पॉपुलर नाउअडेज. सो आई थिंक 7 years इज क्वाइट अ बिट, वोंट यू अग्री? क्योंकि हर साल कितनी सारी फिल्में रिलीज होती हैं, सो वांट टू कीप इट न्यू, वी वांट टू कीप इट पेपी. 972-235-5555. प्लस मुझे अपनी डीजे स्किल्स भी तो शो ऑफ करनी है. यू नेवर नो, यू माइट नीड माय हेल्प, यू माइट नीड माय हेल्प टू डीजे एट योर पार्टी. आई कैन डू इट. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर.

शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप. दिस इज द ड्राइव थ्रू रिक्वेस्ट आवर बैक टू बैक अपबीट पेपी नंबर्स 2020 से लेकर 2026 तक.

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में सूर्यवंशी फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप, जो कि अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर पिक्चराइज किया गया था। यू लिसनिंग टू द ड्राइव थ्रू रिक्वेस्ट आवर, जिसमें बैक टू बैक आपकी रिक्वेस्ट और आपकी डेडिकेशंस प्ले की जाएंगी। योर रिक्वेस्ट इज ओनली अ कॉल अवे, 9722355555। इन दिस रिक्वेस्ट सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज, दे बीन सर्विंग द कम्युनिटी फॉर ओवर टू डेकेड्स एंड दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। सो अगर आपको घर खरीदना है एंड यू वांट इट टू बी अ हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री, स्मूथ प्रोसेस, वेल यू नीड टू कॉल मिस्टर हुसैन पंजवानी, 9722455 loan, or visit dreamhomemortgage.com.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
5: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
4: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
6: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
10: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
9: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
12: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
13: अरे वो केक आया क्या?
14: डीजे कौन हैंडल करेगा?
13: डेकोर वाले को कॉल किया,
14: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
13: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
14: ऑसम इवेंट्स?
13: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
14: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
13: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
12: कॉल नाउ एट 214-725-7466, दैट्स 214-725-7466, एंड टर्न योर सेलिब्रेशन इनटू एन ऑसम इवेंट। आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
15: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड यू आर एबल टू ट्यून इन टू दिस शो एवरी सैटरडे बिटवीन 3:30 and 6 PM एंड देन अगेन ऑन संडे होती है आपसे मुलाकात बिटवीन 3 and 6 PM 38 minutes past 5 right now here in the studio. Today is the 14th of June 2026. It's smashing Sunday evening. So glad you could join us. This part of our show is brought to you by Attorney Umar Khwaja. If God forbid you are in an accident type of situation, wo chahe gaadi ka accident ho ya kahin slip and fall ka kuch situation ho, you can get in touch with Attorney Umar Khwaja because this is what they do. They will deal with the insurance company, make sure that you get the compensation that you deserve. And the best part is ki aapne unhe upfront koi fee nahi deni. Unless you win, you don't owe them anything. Visit attorneyomar.com for more information, or you can call 469-300-5046. Wo tamam log jo call karke mujhe welcome kar rahe hain, as in welcome back keh rahe hain is show par, I really do appreciate your love and support. पर ये भी पॉसिबल है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आज पहली बार हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. वेल, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड आई होप कि आप इसी तरह हर वीकेंड हमें सुनते रहेंगे. आज के इस सेगमेंट में वी आर प्लेइंग न्यू सॉन्ग्स पास्ट 2020.

You cannot be perfect without making mistakes. You cannot get success without facing failures. You cannot feel happiness without being sad. Everything comes in a pair, and you can never get one without facing the other. इसी थॉटफुल थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा स्वागत करते हुए इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। वैसे तो एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज ये साथ कुछ बोनस होके 1 घंटा डबल बढ़ा के मिल गया है हमको। तो आज का हमारा साथ रहने वाला है 6 से 9, तो जुड़ जाइए दोस्तों इस 3 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा के साथ। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली और आज जैसे बहुत बहुत सुहानी। कैसी भी हो हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

मेरी प्यारी बिंदु से दोस्तों सोनू निगम और परिणीति चोपड़ा की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना विच इज कॉल्ड माना के हम यार नहीं। ऐसे ही बहुत ही कूल यानी कि एकदम अच्छे क्या बोलते हैं उसको वाइब वाले गाने यहाँ पे चलते रहेंगे आज ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। तो अगर ऐसे ही अच्छे वाइब के गाने आपको अगर सुनने हैं तो गिव मी अ कॉल 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। जो भी गाने रिक्वेस्ट कर रहेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबाउट।

ब्यूटीफुल श्रीराम की आवाज में दोस्तों सुने थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी। कूल वाइब्स के गाने, जी हाँ ऐसे गाने जो आपके चेहरे पे लेकर आते हैं एक अच्छी सी स्वीट सी स्माइल, ऐसे गाने आज यहाँ पर प्ले करूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। स्टूडियो का नंबर 9722355555 जो भी गाने रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबव। लेकर चलती हूँ आपको अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। रीमा की तरफ से आई है ये रिक्वेस्ट और वो सुनना चाहती है गाना फ्रॉम द मूवी हम तुम।

ऐसे गाने जो आपके दिल को दे दे सुकून और आपके चेहरे पे लेकर आएंगे मुस्कुराहट अच्छी वाली। ऐसे गाने आप सभी को सुनवाऊंगी, आपके पसंद के, कुछ मेरे पसंद के। तो चलिए, आपके पसंद का तो एक गाना हो गया, तो एक दूसरा गाना अभी मेरे पसंद का सुन लेते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट गाने की तरफ चलते जाएंगे। अगर आपको भी ऐसा कोई गाना सुनना है जो लेकर आता है आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल, स्टूडियो का नंबर 9722355555।

ऐसे गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ जिसके सुनते ही आपके चेहरे पे आ जाती है एक अमेजिंग सी स्माइल। वैसा ही ये गाना है शाम, चिकन फ्रॉम द मूवी आयशा, जो लेकर आता है मेरे चेहरे पे स्माइल। अगले गाने की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास पंकज जी के तरफ से, तो चलिए ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक। कहीं मचाइएगा दोस्तों, स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM, फन एशिया रेडियो। दिस इज योर होस्ट अपूर्वा।

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
1: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
2: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
1: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
3: Chicken banana. Chicken banana?
4: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
2: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
5: जिस बात का डर था वही हुआ. Lymphosarcoma of the intestine.
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
11: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो.

गुड इवनिंग और वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। वैसे तो एवरी संडे की शाम में 206 से 8 रहता है आपका और मेरा 7, बट आज का ये 7 एक घंटा बोनस हमको मिल गया है तो 6 से 9 रहने वाला है मेरा और आपका साथ। और आज के इस खूबसूरत से 7वें गाने सुन रहे हम ऐसे जो हमारे दिलों पे एकदम राज करते हैं और हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लेकर आते हैं। अगर आप अपनी गाड़ियों में हो तो 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर आप मुझे सुन सकते हैं। अगर आप अपने घरों में इत्मीनान से बैठे हैं चाय की चुस्कियां लेते हुए तो बिग फैन टीवी ऐप के ऊपर आप मुझे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे गाने आज आपके लिए प्ले कर रही हूँ जो आपके चेहरे पे लेकर आती है एक अच्छी सी बड़ी वाली स्माइल। फोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए 9722355555 पर। आपके मन का गाना मैं यहाँ पर जरूर प्ले करूंगी। मैं गाने नोट डाउन कर रही थी, बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट लाइन अप हो चुकी है, बट गौरवी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे फिर से कॉल कीजिए। आपने जो गाना बताया था, सॉरी आई कुडंट यू नो मेक अ नोट ऑफ इट, अगर आप मुझे फिर से कॉल करके बता सकती है कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती है, आई विल डू माई बेस्ट टू प्ले इट फॉर यू। लेकर चलती हूँ आपको टोनी साहब के रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। दिस वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी मैं खिलाड़ी तू अन्नाड़ी।

जब ऐसे गानों की बात होती है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं, तो 90s के गाने तो डेफिनेटली इसमें अव्वल नंबर पे आते हैं भाई। 90s में ये ऐसे बहुत सारी मूवीज हुई थी, ऐसे बहुत सारे उम्दा सिंगर्स भी थे जो हमारे चेहरे पे आज तक वो गानों से स्माइल आती है। एंड आई होप, आई एम श्योर आप सभी को ये गाना पसंद आया होगा, फ्रॉम द मूवी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। जी हाँ, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। ऐसे गाने आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ दोस्तों, जो गाना सुनते ही आपके चेहरे पे आ जाती है एक छोटी सी स्वीट सी स्माइल। अगर ऐसा कोई गाना आपकी सुनने की इच्छा आकांक्षा मनोकामना है, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। और ऐसे ही कोई अच्छा घर लेने की आपकी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, तो आपको बता देती हूँ दैट ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर stress-free tailored mortgage solutions. So make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. For more details you can call them. The number to call is 972-245-5626 or you can visit their website which is dreamhomemortgage.com. Agla gana Shivani ke request pe.

नेहा भसीन की आवाज में दोस्तों सुन रहे थे आप ये गाना। बहुत ही अमेजिंग वाइब थी इसकी। ऐसे ही गाने, जी हाँ, सी देखिए ऐसे गाने जब भी आप सुनते हैं तो आपके चेहरे पे आ जाती है एक बिल्कुल कड़क वाली स्माइल। ऐसे ही स्माइल आपके लिए जीवन में आपकी आते रहे, इसी मनोकामना के साथ आपको अच्छे अच्छे गाने सुनवा रही हूँ। तो अगर आपकी पसंद का गाना आपको सुनना है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। अगले गाने पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। दोस्तों आप मुझे इतना बताइए कि हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इट्स स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर लाइक फैमिली। सो फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर ऑल द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज द सोल्यूशन। दिस इज नॉट ऑल एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ग्रोइंग। दे आर नाउ हायरिंग एक्सपीरियंस primary care doctors, endocrinologists, pediatricians and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. So if you are passionate about patient care, send your resumes to passionhealthphysicians@gmail.com. So again, you can send your resumes to passionhealthphysicians@gmail.com or you can text 217-454-46 for more information. So visit passionhealthphysicians.com or call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.

0: जो सीनियर्स है ना, उन लोगों ने बोला कि आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी वरना बहुत धोएंगे।
1: मैं कॉफी नहीं पीती।
0: हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं। दो चाय स्पेशल।

0: आज क्या हुआ?
1: ओ, आज सीनियर्स ने बोला है कि तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी।
0: मैंने बोला मूड नहीं है।
1: तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा।
0: अन्नी की यही बात दूसरों से अलग थी, उसने कभी मुझ पे गिव अप नहीं मारा।
2: अब लग रहा ना हीरो।
0: तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने आज मेरे सीनियर से भेजा है।

ब्यूटिफुल सॉन्ग विच काइंड ऑफ रेमिनिस अबाउट योर स्कूल डेज कॉलेज डेज. जी हाँ, ये दिन ऐसे दिन होते हैं ना दोस्तों, दिस इज कॉल्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ आर एवरीबडीज लाइफ. कभी भी इन पलों के बारे में सोच के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इतना अच्छा टाइम बिताते हैं हम हमारे स्कूल या कॉलेज में. एंड दिस मूवी स्पेशली दिस छिछोरे इज ऑल अबाउट हाउ दे स्पेंट देयर अमेजिंग लाइफ ड्यूरिंग देयर कॉलेज डेज. एंड जब एडल्टहुड आ जाता है, शादी वादी बच्चे सब कुछ जब हो जाती है, दुनियादारी की सब की खबर आ जाती है, तो कैसे होता है, दिस इज ऑल अबाउट दैट. सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर पे पिक्चराइज थी ये मूवी विच वॉज कॉल्ड छिछोरे. दोस्तों, फनीशा इज ऑल अबाउट म्यूजिक. सो म्यूजिक के बारे में अगर आपको कुछ बताऊं तो फनीशा इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे बिकॉज एवरी मोमेंट हैज अ सॉन्ग, एवरी मूड हैज अ मेलोडी, वेदर इट्स रोमांस और हार्ट ब्रेक, अ वेडिंग एंथम और अ पार्टी फेवरेट. वी वॉन्ट टू नो योर फेवरेट टॉपिक. सो फ्रॉम जून 1st टिल जुलाई 15th यानी कि कल तक, फिल आउट आर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स across different music categories. Phanisha will select the most loved songs from each genre, the songs that have become the heartbeat of millions. And on June 21st, which is going to be the World Music Day, every Phanisha show will be dedicated to a different music genre and featuring the winning selection. And here is the exciting part. The listener whose song choices make it into our final playlist, the most will win exciting prizes. Another so exciting news. So for all that, what you will need to do is you can visit our Phanisha website, which is phanisha.net, or follow our social media pages for details. Aap hamari social media pages pe bhi jaakar follow kar sakte hai. Hamara Facebook page hai, Instagram page hai, I've heard hamara TikTok page bhi hai. So please wahan par jaakar hame follow kijiye Phanisha page ko and celebrate the magic of love with Phanisha 104.9 FM.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
6: Main expert lifeline use karna chahunga.
5: Computer ji, SBA loan expert se connect kiya jaye.
7: SBA Loan Experts ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
8: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
14: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
16: Main hero in hoon.
17: Kahan gaya?